आज है 29 मई 2026 शुक्रवार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 2083 विक्रम संवत। अम्बाला में सूर्य उदय हुआ है 5:22 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:18 पर।

शब्द ज्ञान की सहायता से विकास के शिखर पर तो पहुंचा जा सकता है, लेकिन परम लक्ष्य परमानंद को तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही पाया जा सकता है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का हमारे अगले प्रोग्राम की प्रति

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 10। आज का शीर्षक है शाम। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, लिखा प्रस्तुतकर्ता एवं निर्देशन आरजे किरनी का।
2: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और स्वागत है हमारे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम जिसका शीर्षक है शाम, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ खूबसूरत शायरी और गाने। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। शाम की ढलती रोशनी में तुम्हारी यादें ताज़ा हो जाती है, दिल की गहराइयों में तुम्हारी आवाज़ मुझे तुम्हारी ओर खींचती है।

चांदनी रात में तुम्हारी याद आती है, दिल की गहराइयों में तुम्हारी आवाज आती है, तुम्हारी आंखों में मैंने अपना घर बसाया है, तुम्हारे दिल में मैंने अपना ठिकाना बनाया है।

तुम्हारे बिना जिंदगी सूनी है, तुम्हारे बिना दिल की धड़कन रुकी है, तुम्हारी यादें मुझे तुम्हारी ओर खींचती है, तुम्हारी आवाज़ मुझे तुम्हारी ओर बुलाती है।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 10। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था शाम। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने, एडिट किया भारत सोपोरी ने, कार्यक्रम को लिखा, निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: जाने मन, दिल ना दुखाओ है जाने मन।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: पेश करें हम। आपने ट्यून किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपुई। दोस्तों, कहते हैं कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इसके कलाकार, लेकिन एक असली कलाकार वही है जो अपनी कला से समाज को आईना दिखाए और अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों को छू ले। मगर इस रास्ते पर चलने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है, सही दिशा का होना भी बहुत जरूरी है। चाहे आप अभी अभी थिएटर की दुनिया में कदम रख रहे हों, यानी हमारे नवोदित कलाकार, या फिर आप बरसों से मंच से जुड़े हों, आप सभी के हुनर को निखारने और आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए आज से हम ला रहे हैं अनमोल वचन, एक बेहद खास शख्सियत की आवाज में। जी हाँ, आज से हम फाइव एलिमेंट्स थिएटर ग्रुप के संचालक और रंग मंच की दुनिया के जाने माने रंगकर्मी श्री मानव मेहरा जी आपके मार्गदर्शन हेतु इस श्रृंखला में रहेंगे। ये वेद थिएटर ग्रुप और कल्चरल सोसाइटी अम्बाला की ओर से रंगमंच और रंगकर्मियों के मार्गदर्शन के लिए एक कोशिश और एक पहल। मानव मेहरा जी, आज से हमारे सभी उभरते हुए और अनुभवी कलाकारों को अभिनय की बारीकियां सिखाएंगे इस रेडियो श्रृंखला में, और बताएंगे कि एक सफल मंच कलाकार बनने के लिए किन तत्वों की जरूरत होती है। कार्यक्रम रंगमंच की ओर में तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू होने जा रहा है कला और कलाकार का ये खूबसूरत सफर, सिर्फ रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz पर।
1: हर जज्बा का पर्दा उठे, हंसी के साथ आंसू भी एक मंच पे आ मिलते, सपने जैसे जिंदा होते जब कलाकार।
2: जाने मन, कभी आपने सोचा है कि किरदार का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? कपड़े बदलने से, आवाज भारी करने से, दाढ़ी बढ़ा लेने से? नहीं, आज हम बात करेंगे विजय आनंद साहब की एक खूबसूरत फिल्म गाइड की, और समझेंगे कि एक अभिनेता रोल नहीं निभाता, वो एक जीवन जीता है। जी हाँ, इस फिल्म में देवानंद साहब का किरदार शुरुआत में थोड़ा हल्का है, चुस्त, आत्मविश्वासी और थोड़ा सा चालाक भी है। वो दुनिया को संभालता हुआ लगता है, लेकिन कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे उसके भीतर की जमीन खिसकती चली जाती है। यहीं से असली अभिनय उसकी शुरुआत होती है। ध्यान से देखिए, पहले हिस्से में देव साहब की चाल थोड़ी तेज है, बात करने की गति तेज है, आंखों में चमक है, और अंतिम हिस्से में चाल धीमी हो जाती है, शब्द कम हो जाते हैं, आंखें स्थिर हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती है। यह बदलाव अचानक नहीं आता है, ये एक बहाव के साथ आता है। यही पहला सबक है। ट्रांसफॉर्मेशन अचानक से नहीं होता है, वो धीरे धीरे उतरता है। अगर आप एक ही दृश्य में पूरा परिवर्तन दिखा देंगे तो ये अभिनय लगेगा, जीवन नहीं। दूसरी बात, इस फिल्म का नायक परफेक्ट नहीं, वो गलती करता है, वो स्वार्थी है और वो महत्वाकांक्षी है, और यहीं पर अभिनय की परीक्षा होती है। जब आप किसी किरदार को गलत मान लेते हैं तो आप उसे निभाना नहीं, सही साबित करना शुरू कर देते हैं, और यही अभिनय झूठा हो जाता है। गाइड हमें सिखाती है, किरदार को जज मत कीजिए, उसे समझिए, उसके भीतर का तर्क सोचिए। अब बात करते हैं आखिरी हिस्से, जहां किरदार एक आध्यात्मिक प्रतीक बन जाता है। ऐसे दृश्य अक्सर ओवर एक्ट हो जाते हैं, एक्टर ओवर एक्टिंग करने लगता है, क्योंकि अभिनेता गंभीर दिखना चाहता है। लेकिन यहां देव साहब गंभीर देखने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते, वो शांत हो जाते हैं। और याद रखिए, शांति अभिनय का सबसे कठिन रूप है। जब आप स्थिर खड़े होते हैं तो कैमरा आपकी हर सोच पढ़ सकता है। इसलिए स्थिरता सिर्फ बाहरी नहीं हो सकती, वो भीतर से आनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, इस फिल्म का ग्राफ शुरुआत से अंत तक किरदार का भावात्मक तापमान बदलता रहता है। एक अभिनेता को पूरी कहानी का नक्शा दिमाग में रखना चाहिए, वरना हर दृश्य अलग अलग ऊर्जा में बिखर जाए। तो अब अभ्यास की बात की जाए। अभ्यास के लिए अपने किसी भी किरदार को लीजिए, उसकी शुरुआत लिखिए, उसका अंत लिखिए, फिर बीच के पांच पड़ाव तय कीजिए। यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। गाइड अंत में यह सवाल नहीं पूछती कि नायक संत था या धोखेबाज, वो पूछती है क्या मनुष्य बदल सकता है। और अभिनेता का असली सवाल यह है, क्या वो हर किरदार के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि अभिनय नकल नहीं, वो परिवर्तन है। इस फिल्म को सिर्फ क्लासिक कहकर मत छोड़ना, उसे देखना और जरूर देखना, और बार बार पॉज करके देखना और अपने भीतर के बदलाव को महसूस करना। अब कमेंट में लिखिए कि गाइड का कौन सा चरण आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, क्योंकि जो कठिन लगे वही आपकी असली ट्रेनिंग है। नहीं

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: تو چھو بوزان 90.0 ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہوں
3: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
4: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
3: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
4: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
3: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। लल्लेश्वरी, जिन्हें ललदेव या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमय दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
5: आज का जो ललवाक मैं आपको बताने वाला हूँ ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हमारे को जीवन को जीने की कला के बारे में बताता है। कश्मीरी में ये ललवाक ललदेव कहती है, खन खन करान कुन्नो वातक, खन खन करान कुन्नो वातक, नखन गसक अहंकारी, सुमई खे माल्य सुमई आसक, स्वमिखन मुसर नहीं बरंदेरी। मतलब ललदेत कहती है कि हम जीवन में या तो भोग विलास में इंडल्ज हो जाते हैं या हम त्याग, यानी जीवन की डाइकोटमी है, या तो एकदम जीवन में भोग, कंज्यूमरिज्म, उपभोगता, स्वार्थ इसमें इंडल्ज हो जाते हैं, या एकदम ऑपोजिट हम जीवन में त्याग, संयम, तप, उपवास या दान इस और इंडल्ज हो जाते हैं। मतलब जीवन की एक डाइकोटमी है, या तो आप एक तरफ है या एक तरफ है। परंतु भोग की तरफ जब व्यक्ति जाता है तो भोग की तरफ जाते जाते उसे कितना भी वो जीवन में पाले वो अतृप्तता हमेशा रहती है, वो डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहती है। आप एक चीज ले लो तो आपको दूसरी चीज की कामना हो जाती है, आपको दो चीजें मिल जाएं तो आपको चार चीजों की कामना हो जाती है। यानी लाइफ का जो पूरा वर्तुल है, वो जो सर्कल है, वो कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ कमी हमेशा जीवन में खलती रहती है। आप जिंदगी के टॉप मुकाम पे भी पहुंच जाएं तब भी आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई कमी महसूस होती रहेगी। यानी जितना पाओ उतना ही और चाहो, यानी पाओ कभी आपको चाहत खत्म नहीं करता। और दूसरी तरफ जब हम त्याग का जीवन अपनाते हैं, जब हम सैक्रिफाइस का जीवन, जब संयम का जीवन अपनाते एकदम ऑपोजिट तप का जीवन अपनाते हैं, उपवास का जीवन अपनाते हैं और साथ ही में हम लोग दान का जीवन अपनाते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन लाता है, हमें अहंकार भर देता है। एक तरफ से भोग हमारे जीवन में लालसा और लोभ भर देता है, लेकिन दूसरी तरफ वाला जीवन हमारे जीवन में अहंकार भर देता है। हम इस बात के अहंकारी हो जाते हैं कि हम कुछ दान कर रहे हैं, हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं। तो दोनों चीजों के बारे में लद्दत कहती है कि दोनों चीजें सही रास्ते नहीं है। वो कहती है समय के मारे समय आसक, यानी समय मतलब बैलेंस के साथ जीवन में रह, यानी न ज्यादा खा न ज्यादा त्याग कर। यानी हमारे यहाँ पे एक शब्द है वॉलंटरी पॉवर्टी, यानी उतना ही लो। वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब गुर्बत नहीं है, वॉलंटरी पॉवर्टी का मतलब है उतना ही जीवन में लो जितने जीवन में आपको आवश्यकता है। होर्डिंग मत करो, एक्यूमुलेशन में मत जाओ। तो ये जो संतुलन वाला शब्द लल्लित इस्तेमाल करती है, समय खेमाल समय आसक, यानी ये संतुलन वाला जो शब्द है इसमें भोग त्याग और ये एक तरफ इसकी बिल्कुल कमी और दूसरी तरफ सैक्रिफाइस यानी बैलेंस। यानी जिस समय हम बैलेंस को प्राप्त हो जाते हैं, यानी जब हम लोग न ज्यादा खाना और न ज्यादा त्याग करना, एक बैलेंस जीवन जितनी आवश्यकता है उतने में चलते हैं, तो जीवन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है और वही ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन की एक क्रांति बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि न हम ज्यादा भोग दिखावे में, न तनाव में, न बर्नआउट में और ना ही हमारे जीवन में किसी प्रकार का डिससेटिस्फेक्शन। तो होता क्या है कि इंटरनल सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। जब आप बैलेंस में चलते हो, जब आप बिल्कुल ऐसी अवेयरनेस में चलते हो कि मुझे न ज्यादा चाहिए न मुझे ज्यादा त्याग करने की आवश्यकता है, तो आप देखते हैं कि हमें एक आंतरिक सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमें एक आंतरिक जॉय मिल जाता है, हमें भीतर से एक मुक्ति का एहसास होना शुरू हो जाता है, एक फ्रीडम ऐसी होती है जो हमें सच्चा सुख देती है। और यही लल्लित का एक बहुत ही बहुमूल्य बात।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: दोईचु गोजान 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हंद।
3: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
1: www.sdcollegeambala.ac.in

आपको मेरा आदाब। मैं हूं रमेश मराठा। नमस्ते। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत बन गई। मैंने तुम्हारे चेहरे से इसे चुरा लिया है। यहां इन घने अब्र आलूद मौसमों में तुम छिप जाते हो और कोसीकजा का दामन थाम लेते हो। अक्सर बादल के टुकड़े दयारों में बदल जाते हैं और अनदेखी बस्तियों को राहत बख्शते हो, हरारत से महफूज रखते हो। कहीं कोई भटकी मासूम मुस्कुराहट आज मेरी चाहत क्यों बन गई।

बेशक परस्तिश में वक्त गुजरता, जो तुम रूबरू मुझे अपनी पहचान कराते। रिश्तों को जताती, मेरे जज्बात को अपनी पनाह में महफूज रखते, अपनी इबादत दुआओं में मुझे शामिल करते। मैं जानता हूं मैंने बे इंतहा प्यार किया है तुमसे, जिसकी गवाही आसमां में तैरते बादल हमेशा से देते आ रहे हैं।

मौसम आए मौसम जाए, पर सदियों से तुम न आए। तुम आकाश थे रोशनियों के, सफर में हम सफर थे मील के पत्थर थे। इन प्यार की सरहदों के निगहबां थे, मेरी हर कोशिश की शुरुआत थी, मेरी हर सुबह की पुकार थी। कितने ही मौसम आए, कितने ही मौसम जाए, क्या कभी तुम लौट

कहानी का बुलबुला जो बनता रहा, मिटता रहा। मिटता रहा, बनता रहा, कभी हथेली पर ठहरा नहीं, कभी जमीन पर उरका नहीं, कभी बादल बना तो कभी शबनमी बूंद। मैंने उसे तैरते पानियों में बनते मिटते बिखरते देखा, इन खामोशियों में फना होते हुए देखा। शायद वो गुजरे कल का तस्वीर था जो कभी लौटता नहीं, जो कभी लौटता नहीं।

मैंने सुना है यहीं से गुजरता था वो जो कभी मेरे छत पे आकर तारों को गिनता था, चांद की परछाई से लिपटता था, नदामत भरी आंखों से मेरी बेबसी, मेरी लाचारगी को अपने पास महफूज रखने की कोशिश में हमेशा से ही मसरूफ, अपने दुपट्टे से अपने ही चेहरे को ढकना, ये उनकी फितरत में शामिल है। दिल के ठहरे हुए पानी में पत्थर ना फेंको, चांद का अक्स बनाया है, बिखर जाएगा।

एक आहट क्यों आकर रुक गई मेरे आंगन में, एक परछाई क्यों मुझे छूने को है बेकरार बेताब। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक एहसास आज भी है पलता मेरे वजूद मेरे जीवन के हर हिस्से में, कि कोई तो है, कि कोई तो है जो अभी भी रिश्तों को बरकरार बनाए रखे हुए है।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा ही देश का भविष्य। आज के आमंत्रित मेहमान हैं श्रुति सयाल, विशेष आभार ईशान खन्ना, सहयोग आरजे गिरनी, रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत करेंगे भारत सोपोरी।

0: नमस्कार, प्रणाम और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज हमारे खास प्रोग्राम युवा ही देश का भविष्य में एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो न केवल तकनीक की दुनिया में माहिर है बल्कि कला और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक चमकता सितारा है। हमारे साथ है श्रुति सयाल, जो वर्तमान में बिजनेस एनालिस्ट हैं और साथ ही अपनी MCA की पढ़ाई भी कर रही हैं। श्रुति, आपका रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भारत जी, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस रेडियो स्टेशन पर आऊं और अपने विचार प्रकट करूं। धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: श्रुति, आप एक बिजनेस एनालिस्ट हैं और बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही हैं। सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपका काम असल में है क्या।
1: मेरा काम असलियत में ये है कि हमारे पास अलग अलग तरह के कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो हमें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारा बिजनेस ये है और हमें इस बिजनेस को डिजिटल करना है, अपनी एक वेबसाइट बनवानी है, हमें टेक्निकल वर्ल्ड में कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, अपना प्रमोशन करा सकते हैं सोशल मीडिया पर, गूगल पर और भी बहुत से स्थानों पर, जिससे वो अपनी मार्केटिंग कर सके और उनका बिजनेस बढ़ सके। तो हम उनके सिनेरियो को देखते हुए जो भी जिस भी कंडीशन में वो लोग हैं उनको सजेस्ट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उनसे कम्युनिकेशन के बाद हम एक सॉल्यूशन पर आते हैं और उसके साथ हम आगे जाते हैं।
0: आपसे जानना चाहूंगा, जब आप कोई भी समाधान देते हैं किसी क्लाइंट को, तो आप उनसे क्या क्या जानकारी पहले लेते हैं ताकि आप एक निष्कर्ष तक पहुंच सकें।
1: हम बेसिकली उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं कि क्या वो एक रियल एस्टेट एजेंसी के मालिक हैं या फिर उनकी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। उसके अकॉर्डिंग हम उनकी एक रिक्वायरमेंट को एक गैदर करके एक प्रपोजल बनाते हैं, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट की उनके बिजनेस को क्या क्या डिजिटली प्रेजेंस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या उन्हें वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है या फिर उन्हें ऑनलाइन प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है। उसके अकॉर्डिंग हम एक स्कोप ऑफ वर्क बनाते हैं, उनकी वेबसाइट में क्या क्या होगा, क्या हम उन्हें डिज़ाइन कैसा देंगे, किस टेक्नोलॉजी में उनकी वेबसाइट बनाएंगे, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे, फिर उनकी वेबसाइट को सर्वर पर डिप्लॉय कर देंगे। अगर वो मार्केटिंग में चाहते हैं तो हम उनकी सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करेंगे या फिर हम गूगल पर उसको कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे।
0: आप एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर काम करती हैं, तो आपने पढ़ाई खत्म करने के बाद अब आप जॉब करती हैं, तो एक बिजनेस एनालिस्ट के तौर पर जब आप किसी भी क्लाइंट को समाधान देते हैं तो दिल में, मन में कितनी संतुष्टि होती है?
1: बहुत ज्यादा संतुष्टि होती है। मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं चाहती तो अपनी कोडिंग करियर भी परस्यू कर सकती थी आगे, पर मैंने ये प्लेटफॉर्म बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन इसलिए चुनी जिससे मैं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, उन्हें एक समाधान दे सकूँ, अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं।
0: श्रुति, आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपसे अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने बारे में एक संक्षिप्त सा इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे श्रोता आपको और अच्छे से जान सके।
1: थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यंग जेनरेशन से बात कर रही हूं, आपसे बात कर रही हूं, फॉर श्योर बहुत थैंक यू सो मच। बट अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो ये है कि मेरा नाम श्रुति है, मैं 22 साल की हूँ, अम्बाला में रहती हूँ और एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ। जस्ट मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी लास्ट ईयर और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज में वर्क करने की। एज एन इंटर्न मैं वहाँ पर गई थी, उसके बाद मैंने कोडिंग में अपना पैर जमाया, कोडिंग सीखी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट पूरी करी, बट वो कहीं ना कहीं जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस था, मेरे कॉलेज टाइम का, मेरे स्कूल टाइम का, मेरी मैनेजमेंट स्किल्स, वो कहीं ना कहीं मेरे साथ जुड़े रहे और वहाँ की कंपनी के बॉस ने मुझे मौका दिया कि क्यों ना आप अपने स्किल्स को आगे और कंटिन्यू करो और हमारी कंपनी में एज अ बिजनेस एनालिस्ट रोल परस्यू करो। तो उसके साथ ही मैं आगे अब बढ़ती जा रही हूँ और इसी को आगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में आगे बढ़ाऊंगी।
0: बहुत खूब। श्रुति, मैंने सुना है कि आप थिएटर यानी रंगमंच से भी जुड़ी रही हैं, स्ट्रीट प्ले और वन एक्ट प्ले का अनुभव आपके प्रोफेशनल करियर में कैसे काम आता है?
1: स्ट्रीट प्ले हो या वन एक्ट प्ले, हर जगह पर आपको कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत होती है। हमें कुछ भी लाइफ में करना है उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही जब मैं क्लाइंट से बात करती हूँ, क्लाइंट से नहीं तो अपने कलीग से बात करती हूँ, डेवलपर से बात करती हूँ, डिज़ाइनर से, टेस्टर से, किसी भी इंसान से मैं बात करती हूँ, तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए सामने वाले के सामने हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। हो सकता है कि हमारी नॉलेज बहुत अच्छी हो बट अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उस बात को बोलने का तो शायद हम उतने अच्छे से काम ना कर पाए। तो हाँ, अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है या फिर मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है तो ये जस्ट बिकॉज मैं थिएटर में थी, मेरे कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ।
0: श्रुति, जहाँ तक रंगमंच का सवाल है, रंगमंच हमेशा हमें एक अच्छा इंसान बना देता है, हमें वो एज अ पर्सन ग्रो होने का मौका देता है, हमें बोलने का कॉन्फिडेंस देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप थिएटर के साथ जुड़ी हैं, आप कल्चरल एक्टिविटीज के साथ जुड़ी हैं, तो ये आपके करियर में आगे भी बहुत सारा हेल्प करता रहेगा। आपके लिए संगीत क्या मायने रखता है?
1: संगीत मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि एक टाइम के बाद जब आप अपनी फैमिली में होते हो या अपने आप जॉब पर होते हो, कहीं पर भी होते हो, आप एक सिनेरियो में एक सीक्वेंस के साथ आप काम करते रहते हो तो माइंड में बहुत सी चीजें आ जाती है। तो एक अच्छा म्यूजिक जो होता है आपको टेंशन फ्री करता है और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जिसे सॉफ्ट म्यूजिक हम सुनते हैं या फिर पार्टी म्यूजिक सुनते हैं, वो एकदम से मूड स्विच कर देता है।
0: तो आप मानते हैं कि म्यूजिक एक थेरेपी हमें देता है? और अगर ऐसा है तो आप किस तरीके का संगीत सुनते हैं? आपकी पसंद का कोई भी गीत हो जो हम श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे कृपया बताएं।
1: मुझे वैसे तो बहुत से सॉन्ग्स पसंद है बट स्पेसिफिकली मैं रेट्रो म्यूजिक भी सुनना पसंद करती हूँ। तो उसमें मुझे लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, ये वाला गाना बहुत पसंद है।
0: आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी बिल्कुल,
0: प्लीज।
1: लिखे

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। हम आज इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं श्रुति सयाल से। इस कार्यक्रम का नाम है युवा ही देश का भविष्य। हमें बहुत अच्छा लगता है युवाओं से बात करने, ताकि हम ये जान सकें कि वो अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं और देश के लिए वो क्या कुछ करना चाहते हैं। श्रुति से अगला प्रश्न पूछते हैं। श्रुति, आप रोट्रैक्ट क्लब के सचिव भी रही हैं, एक लीडर के तौर पर आज के युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
1: जैसे कि मैं 2022 से 2023 तक एक सेक्रेटरी के रोल में थी, उस रोल में ने मुझे सिखाया कि आपकी डेजिग्नेशन मैटर नहीं करती है
0: जी,
1: कि आप किस पोजीशन पे हैं
0: जी।
1: अगर आपके अंदर एक जील है, एक पावर है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हैं। एक सिचुएशन उस टाइम पर ऐसी आई कि जो क्लब के प्रेसिडेंट थे वो अवेलेबल ही नहीं रहे काफी टाइम तक, तो उस टाइम को ना घबराते हुए मैंने उस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया, क्यों ना मैं एज अ प्रेसिडेंट काम करूं
0: जी।
1: मैंने पूरे क्लब को संभाला और उसी चीज ने आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, कॉन्फिडेंस दिया है, अपने ऊपर विश्वास इतना दिलाया है कि हाँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मैं सीनियर्स के साथ रहती हूँ, पर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जूनियर हूँ या मुझे एक साल हुआ है, मैं हर चीज कर सकती हूँ अगर मेरे अंदर आत्मविश्वास है तो।
0: तो इसके साथ ही जुड़ता हुआ मैं प्रश्न आपसे करना चाहूंगा, जितने भी श्रोता हमारे आपको इस समय सुन रहे हैं, खास करके आप युवतियों को क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं उन्हें बस यही कहना चाहती हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखें और लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। आप कोशिश करेंगे, छोटी से छोटी छोटी छोटी कोशिश ही करिए। ऐसा नहीं है कि आज ही आप बिल्कुल अच्छा आपको पैकेज मिल जाएगा या फिर आप बहुत अच्छे एक मुकाम पे पहुंच जाएंगे, पर छोटी छोटी चीज़ों से कोशिश करिए। अपने आप को बाउंडेड मत रखिए कि हाँ कि अच्छा ऐसी कंडीशन है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत रखिए अपने जीवन में। हमेशा अपने आप के अंदर एक ऐसा जुनून रखिए कि नहीं, अगर जो गलत है तो गलत है और जो सही है वो सही है, और इसके साथ ही आगे बढ़ते रहिए।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे देश में युवा हो या युवतियां हो, आमतौर पर यह कहा जाता है कि देश की जो ताकत होते हैं वो देश के युवा होते हैं, और आज आपको जितने भी अवसर मिल रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कार्य करने के लिए, तो कितनी संतुष्टि होती है कि आप भी देश निर्माण में कार्य कर रही हैं।
1: बहुत संतुष्टि होती है। अगर मुझे कोई सुन रहा है और मेरी बातों से किसी के जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है, या फिर अगर मैं कहीं पर भी हूँ, मैं अपने घर पर हूँ, मैं अपने पड़ोस में हूँ, मैं अपने वर्क प्लेस पे हूँ, कहीं पर भी हूँ, अगर मेरी बातों का किसी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, मुझसे वो प्रेरित हो रहे हैं और अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देश के विकास पर भी इम्पैक्ट डालता है।
0: आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं, ये मैंने आपके डिटेल से पढ़ा है, और आपको घूमना बहुत पसंद है। क्या नए लोगों से मिलना और नए विचार साझा करना आपके भविष्य के लक्ष्यों में मदद करता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, और ये चीज मुझे मेरे जेनेटिक्स से मिली है, क्योंकि मेरे घर पे सभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, सबको ही बहुत पसंद है लोगों से बात करना, थॉट्स एक्सचेंज करना, बस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि आप उस चीज़ को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अपने एक्सट्रोवर्ट नेचर को इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि क्या हम किसी से क्या नॉलेज ले सकते हैं, किसका क्या थॉट प्रोसेस है, और वो मेरे जीवन में बहुत चीज़ काम आती है कि मैं आगे, और तभी मुझे पसंद भी है काफ़ी लोगों से बात करना, जैसे कि आज मैं आज आपसे मिली हूँ और आज मेरे आपसे थॉट एक्सचेंज हुए हैं, मुझे कुछ नया जानने को मिला है और मैं आपसे कुछ सीख कर ही जाऊंगी आगे।
0: अभी आपके करियर की शुरुआत हुई है, आपका इमीडिएट लक्ष्य क्या है?
1: मेरा लक्ष्य सिर्फ एक ही है, वो चाहे जिस भी जॉब रोल में मैं पूरा करूं, मैं एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती हूँ, जो कि किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे, अपने फाइनेंसेस के लिए भी कमाना चाहती हूँ, जिससे मैं डोमिनेंस रहूँ या फिर मुझे कोई कुछ कह ना सके। मैं उनसे कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं घर के या बाहर के किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, मैं अपनी तरफ से सपोर्ट कर पाऊँ, क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे बहुत नाजों से पाला है और बहुत फाइनेंशियल या फिर कंडीशन जो भी है उसमें मेरा हमेशा कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी भी फैसिलिटी में, एंड कभी डिफरेंस भी नहीं किया मुझ में और मेरे भाई में. तो बस मैं यही चाहती हूँ, मैं जिसके साथ भी हूँ या फिर जिसके साथ अभी हूँ उनको फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ और आगे वो भी कह सके कि हाँ ये मेरी बेटी है.
0: श्रोताओं, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जो बदलाव आ रहा है वो एक सोच का बदलाव आ रहा है. एक समय था जब महिलाएं किसी भी डिसीजन में उनका कोई रोल नहीं होता था. हम श्रुति से बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनका लक्ष्य है कि वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लें, अपने जिंदगी में, अपने परिवार में जो भी डिसीजंस हो उसमें उनका साथ होना चाहिए. अगर ये सोच श्रुति रखती है तो ये हमारे देश की हर एक युवती को रखना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, आने वाली जिंदगी उनकी अपने दिशा से हो, वो एंटरप्रेन्योर्स बने, वो लीडर्स बने, वो कंपनियों की शुरुआत करें और उन कंपनियों की सीईओ भी बने ताकि हमारा देश आगे बढ़े. और ये हम सबके लिए एक बहुत खुशी की बात है कि देश बदल रहा है. श्रुति, चलते चलते उन युवाओं के लिए कोई एक बात जो BCA या MCA कर रहे हैं और कॉरपोरेट दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, आप उनके लिए कोई

0: मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिस से बिल्कुल आकर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता, बट स्टिल इसके बीच में भी मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे और भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने PMP सर्टिफिकेशन में भी अप्लाई करा हुआ है। तो दिन आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा, हैक्टिक हो जाएगा, बट जब आपको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपके हाथ में, वो आपकी ड्रीम जॉब होगी या फिर जिस भी करियर में आप परस्यू करना चाहते हो, वो जब आपके पास होगा तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, आई वॉज राइट। टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको यूटिलाइज करना और उसको फुलेस्ट यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि अपनी इंजॉयमेंट में भूल जाती हूँ उसके चक्कर में, कि नहीं मैं पूरा दिन ही ऐसे जा रहा है या फिर मेरे वीकेंड्स ऐसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा ही हमें वर्क प्लेस पे भी सिखाया जाता है कि लर्निंग कभी नहीं रोकनी चाहिए। लाइफ में हमेशा हर दिन आपको कुछ नया सीखना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर यू आर डूइंग। सो मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ तो हेक्टिक होगी, बट जो भी आपको एंड में रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। सो स्टे फोकस्ड, डिटरमाइंड।
1: इसके लिए मैं एक कोटेशन मैंने कहीं पढ़ी है, तो वो मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने श्रोताओं से, वो ये है, थिंक बिग एंड एक्ट। आप बड़ा सोचिए और उस पर कार्य करिए, एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। एक महिला होने के नाते ये बताइए कि कार्यस्थल जहाँ आप काम करती हैं, आवागमन या आप एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, और डेली लाइफ में कितना सुरक्षित आप महसूस करती हैं एज अ वुमन?
0: मैं अपने वर्क प्लेस पर और जो भी रूट में लेकर जाती हूँ, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सेफ फील करती हूँ। इसके पीछे का रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई इंसान हमें सिक्योर या इनसिक्योर फील नहीं कराता है। शायद हम में ही उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, हम जहाँ पर भी है वहाँ पे हम कॉन्फिडेंटली बैठे या फिर हम कॉन्फिडेंटली वर्किंग करें। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई थर्ड पर्सन आके कुछ पोक कर जाएगा या फिर आपको कुछ इनसिक्योर अनकंफर्टेबल फील करा देगा, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता। बाकी देर इज़ अ सिचुएशंस, आती है सिचुएशंस, बट उसमें आपको कॉन्फिडेंटली एंड बोल्डली उसका रिप्लाई करना चाहिए। पर मुझे अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा सुरक्षित फील होता है, क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है और मेरा वर्क प्लेस काफी सेफ भी है।
1: बहुत अच्छी बात कही श्रुति आपने। इस कार्यक्रम में जिसमें हम आज बात कर रहे हैं, इसका नाम है युवा ही देश का भविष्य है, और मुझे वाकई लग रहा है कि जब हम युवाओं से बात करते हैं हमें ऊर्जा भी मिलती है और हमारा देश आगे बढ़ता हुआ दिखता भी है। आज के इस कार्यक्रम में हमारी अतिथि श्रुति ने हमें बताया कि कैसे तकनीक, कला और समाज सेवा को एक साथ साधा जा सकता है। श्रुति, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ अम्बाला कैंट के इस FM रेडियो स्टेशन पर आने के बाद आपको यहाँ आके कैसा लगा, और अंत में आप सभी सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मुझे इस रेडियो स्टेशन पर आकर बहुत अच्छा लगा कि मैंने सभी लोगों से बात करी, आपसे बात करी, मुझे पता चला कि लोगों का क्या थॉट प्रोसेस होता है, लोग कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, क्या हम नया सीख सकते हैं। और इट इज़ लाइक नेवर एंडिंग गेम, आप जितना सीखते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। अगर एक लाइन में कुछ मैं संदेश देना चाहूँ, जैसे कि अभी हमारा न्यू ईयर मंथ भी चल रहा है, तो मैं उसमें बस एक ही बात कहना चाहती हूँ एक कोट में, जो बीत गया उसका क्या मलाल करे, जो बीत गया उसका क्या मलाल करे, अब जो हासिल है अब उसी से सवाल करें। बहुत दूर तक जाते हैं यादों के काफिले, फिर क्यों पुरानी बातों में दिन से रात करें, जो बीत गया उसका क्या मलाल करें। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी युवा अपने विचारों को यहाँ पर आकर रखना चाहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो इस रेडियो स्टेशन पर आ सकते हैं मेरी तरह, और अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं ताकि हम किसी का मार्गदर्शन कर सकें।
1: दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। यहाँ हर धड़कन में नई उमंग है, और आपको आज के मेहमान श्रुति के एक और गीत के साथ छोड़े चले जा रहे हैं, और हम आपसे चाहेंगे इजाजत। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट करूंगा। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
0: नमस्कार, जय हिंद।
2: जन्नत की है तस्वीर।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा ही देश का भविष्य। आज के आमंत्रित मेहमान थे श्रुति सयाल। विशेष आभार ईशान खन्ना। सहयोग आरजे किरणी। रिकॉर्ड एडिट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज मेरे साथ हैं FM 90 के को फाउंडर डायरेक्टर किरने।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास मुलाकात, एक ऐसी काबिले एहतराम सुनहरी आवाज की मालकिन उद्घोषिका और एक बेहतरीन इंसान श्रीमती माधवी शर्मा जी के साथ बातचीत।
1: इनके साथ बात करेंगे एक लेजेंडरी वॉइस और एस ब्रॉडकास्टर जो देश विदेश में प्रख्यात है। वो हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा भी है। वो है आदरणीय रमेश मरहट्टा जी।
0: आइए सुनते हैं और श्रोताओं को सुनाते हैं ये वार्ता दो अनुभवी ब्रॉडकास्टर्स के बीच, और साथ ही हसीन नगमों से सबका मनोरंजन भी करेंगे।
1: प्रस्तुत है ये कार्यक्रम।
2: नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं माधवी शर्मा, नाम ही काफी है, रेडियो की एक मायानाज उद्घोषिका। माधवी जी नमस्ते।
3: रमेश जी, कुछ शब्द नहीं आ रहे मेरे सामने जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं कि आज की इस महफिल में आपने मुझे मेहमान बनाया है, और जितने विशेषण आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं, शायद मैं इसके काबिल हूँ या नहीं हूँ इसके बारे में मैं कह नहीं सकती।
2: कहाँ पैदा हुई आप?
3: मेरी पैदाइश जम्मू की है। मेरे पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने BSc एग्रीकल्चर बापटला आंध्र प्रदेश से की थी और MSc एग्रीकल्चर कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की थी, और वो जम्मू कश्मीर के पहले प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे।
2: अच्छा।
3: तो वहां पे तलातुलो फॉर्म था, वहां पे वो मैनेजर लगे थे, और मेरी पैदाइश उसी घर की है।
2: खेले कूदे
3: वहां पे। उसके बाद जैसे आपने कहा कि बचपन कहाँ बीता, मेरी दादी का घर, दादा दादी का घर लिंक रोड के पास मस्तगढ़ में था।
2: अच्छा।
3: वहां हम सब ताया चाचा उनके बच्चे इकट्ठे रहा करते थे एक संयुक्त परिवार में। और संयुक्त परिवार में आपको पता है
2: जॉइंट
3: फैमिली में उसका जो एक ऑरा ही अलग होता है, एक अलग सा आभास होता है। जहां तुम्हारा मनपसंद खाना बन रहा हो वहां जाके तुम आराम से खा लो, हो सकता है तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती रहे, लेकिन वो भी जानती थी कि अगर ये समय से नहीं आई है तो जरूर किसी जगह उसको अपना मनपसंद खाना मिल गया है।
2: अब वो दौर नहीं रहा,
3: वो बातें नहीं रही, वो रिश्ते नहीं रहे, और वो सुखद आभास नहीं रहा।
2: रेडियो के साथ कब से जुड़ी आप?
3: मैं मात्र 6 वर्ष की थी रमेश जी जब मैं रेडियो में मैंने आना शुरू किया, बच्चों के प्रोग्राम में। हमारे मोहल्ले में एक उद्घोषक थे RP साहनी, वो मेरे पिताजी के मित्र थे, तो कहने लगे आप माधवी को क्यों नहीं भेजते हो? तो पिताजी ने कहा अभी तो छोटी है तो उसे क्या भेजना, उनका भेजिए बच्चों के प्रोग्राम में। तो उनके आग्रह पर मैं 6 साल की उम्र से बच्चों के प्रोग्राम में आना शुरू किया। उस समय यहाँ बरगद का पेड़ होता था, अगर आपको याद है, आप भी हमारे बहुत पुराने हमारे सहकर्मी हैं। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा किया जाता था और प्रिंटेड स्लिप्स मिलती थी, और जो बच्चा उस स्लिप को बिना फंबल के पढ़ लेता था उसी को लाइव माइक्रोफोन पे आने की इजाजत होती थी, क्योंकि तब बच्चों का प्रोग्राम लाइव होता था।
2: बिल्कुल।
3: तो वो जो परीक्षा थी हमने पास कर ली, और हमें पहली बार वो जो हमने स्लिप पढ़ ली और हमें उसके लाइव माइक्रोफोन पर बच्चों के प्रोग्राम में वो स्लिप पढ़ने का जो सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ, तो वहां से मेरा ये सुनहरी सफर जो है वो शुरू हो गया।
2: धीरे धीरे फिर आगे बढ़ती गई,
3: लेकिन आई नेवर लुक्ड बैक। उस बच्चों के प्रोग्राम के बाद, बच्चों के प्रोग्राम में तो आती रही लेकिन आई नेवर लुक्ड बैक। उसके बाद मुझे ये लगा कि जैसे मैं इसी के लिए बनी हूं। अभी मैं बहुत छोटी थी, बच्चों के प्रोग्राम में आना शुरू किया। फिर एक समय आया कि बच्चों के प्रोग्राम में जो बच्चे थे वही प्रोग्राम को एंकर करते थे।
2: अच्छा।
3: तो उसमें एक मुझे चुना गया और एक मेरे साथ थे जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। तो हम दोनों भैया दीदी बनकर बच्चों का प्रोग्राम एंकर किया करते थे,
2: प्रेजेंट करते थे।
3: हाँ, वो भी एक बहुत ही सुंदर और अनूठा एक्सपीरियंस था।
2: उसके बाद बाकी जो आगे आप आवाज आप किया है, कैजुअल अनाउंसर से शुरुआत हुई?
3: नहीं, कैजुअल अनाउंसर नहीं, उससे पहले जब बच्चों के प्रोग्राम से हम आगे निकले तो बाल कलाकार बने, ड्रामा वॉइस।
2: अच्छा।
3: उसमें हमने आना शुरू कर दिया। उसके बाद जब थोड़े से और आगे सीनियर क्लास में गए तो मेरी पसंद कार्यक्रम पत्रावली और आपकी पसंद कार्यक्रम, उसको हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया, और वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम म्यूजिक ऑफ माय चॉइस।
2: अंग्रेजी पे आपकी पकड़ थी,
3: प्रोफेशन सी थी, हाँ जी, उसमें भी थी पकड़। उर्दू आती थी कुछ, यहाँ के जो मेरे वरिष्ठ मेरे सहकर्मी थे उन्होंने बहुत प्यार दुलार के साथ मुझे सिखाया, ग और अज इस सब का, कहते ना वो आपके जेब और वो सब कुछ उन्होंने मेरा दुरुस्त किया, पर वो कहते थे तुम्हारा इतना खराब नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बारीकियां जो है ब्रॉडकास्टिंग की, भाषा की, वो सिखाई। और वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम म्यूजिक ऑफ माय चॉइस, पत्रावली और आपकी पसंद कम से कम 16-17 साल तक मैं करती रही।
2: आपके दूसरे साथी कौन थे जो?
3: बहुत से थे, शिव मोहन ने मेरे साथ वो प्रोग्राम किया, उसके बाद एक और थे हमारे यहाँ पे अनाउंसर रविकांत के साथ भी कुछ देर के लिए किया, लेकिन मैं उस प्रोग्राम को करती रही। और तब तक मैं अपना कॉलेज शुरू कर चुकी हुई थी, और जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कर ली रमेश जी, तो मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बलबूते पर MA इंग्लिश में सीट मिल गई। और अच्छा। मैं तो अपने इतनी प्रफुल्लित थी कि क्योंकि हमने लिटरेचर नहीं किया था तो हमें नहीं मिल सकती थी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे हमें सीख
2: उसमें मिली। यही रेडियो काम आया,
3: रेडियो काम आया। मैं बहुत अच्छे ड्रामास में जाती थी, मैंने मंचन भी किया उनका, और एक डोगरी नाटक था जब मैं फाइनल ईयर थी अपने BSc होम साइंस में, तो हमारी एक मैम ने, जब क्या होता था कोई भी नोटिफिकेशन आती थी तो लड़कियों ने मेरा हाथ खड़ा कर देना इकट्ठा मिलकर, तो उसमें था हमारे हिस्से आया था डिस्प्ले योर टैलेंट में, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ करता था, आज भी होता है
2: जी जी।
3: हमारा उसमें नाटक आया डोगरी में।
2: अच्छा।
3: तो प्रोफेसर लाल हुआ करती थी, तो कहने लगी कौन कर सकता है डोगरी का, तो मेरी सहेलियों ने कर दिया, लेकिन मैं थोड़ी हिचकिचाहट से उठी और मैंने कहा मैम मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है।
2: भाषा पे पूरी पकड़ थी आपकी, डोगरी भाषा पर?
3: हाँ, घर में पूरा प्रयास होता था पिताजी, माता पिताजी का, कि डोगरी बोली जाए, क्योंकि वो आपस में बोलते थे। फिर भी आप ये कहें कि हम बहुत फ्लुएंसी से बोलते थे, नहीं बोलते थे। तो उन्होंने जब कहा कि, मैंने कहा मैम मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुलीग्स तो चाहती है, मेरी सहपाठी तो चाहती है कि मैं करूं, लेकिन मेरी फ्लुएंसी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, डोगरी होते हुए तुम्हें डोगरी नहीं आती, कैसे डोगरे हो तुम। मुझे वो बात दिल में चुभ गई। घर में मैं गई और पिताजी के साथ लड़ाई करने लगी, आपने हमें डोगरी क्यों नहीं सिखाया। उनका, मैं और तुम्हारी माँ तो डोगरी में ही बात करते हैं, तुम ही हिंदी और अंग्रेजी का गेर लगाती हो। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था, बहुत रोई मैं, पर पिताजी ने कहा अगर सच्चे मन से आपको उनकी बात बुरी लगी है तो टेक इट अप एज चैलेंज। मैंने वो चैलेंज लिया, 17 पेज का रोल था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा शीशा तुम्हारा जज है, जो तुम्हारी एक्टिंग है उसमें निखार लाएगा, शुरू हो जाओ बिना पीछे देखे। तो 17 पेज का मैंने अपने, मैं जानती हूँ और मेरा वो शीशा जानता है,
2: कितनी,
3: वो मेरा जानता है, वो मेहनत की, और बहुत खुशी हो रही मुझे बताते हुए अपने सुनने वालों को कि डिस्प्ले ऑफ टैलेंट में उस साल मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला।
2: ये स्टेज पे इसका मंचन
3: हुआ। स्टेज का मंचन होता है, यूनिवर्सिटी लेवल का एक प्रोग्राम होता है, कॉलेज लेवल का।
2: उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे रेडियो में आप परमानेंट?
3: मैं बीएड कर रही थी, बीएड कर रही थी, तो कैजुअल अनाउंसर का निकला, मुझे बुलाया गया, कैजुअल अनाउंसर का मैंने दे दिया, तो उसमें मैंने क्लियर कर लिया। तो उसके बाद बुकिंग्स मिलने लगी, और मीनवाइल मेरे फादर ने मुझे जबरदस्ती बीएड करवाई। जब मैंने पूछा कि क्यों करवाना चाहते हो,
2: आपको हम टीचर बनाना चाहते हैं,
3: ना, उन्होंने कहा जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जब नहीं चाहते हो, कोई भी बुरा समय आए, आपके हाथ में एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री का कोई सानी नहीं है। बहुत मैंने उनसे, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ थी, क्योंकि मैं MA इंग्लिश नहीं छोड़ना चाहती थी, अभी 4 ही महीने हुए थे मुझे MA करते, तो वो बहुत खुश थे कि इसकी प्रोफेशनल डिग्री हो जाए। उस वो जमाना कुछ और था रमेश जी, माँ बाप की कही बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी, और बच्चे उसको नकारते भी नहीं थे। करनी पड़ी BEd, कर ली BEd, और मैं एक्स कॉन्वेंटी थी, तो जब बात फैली कि एक्स कॉन्वेंटी जो है वो BEd कर चुकी है, क्योंकि मेरी मामी जी वहां पढ़ाती थी, तो मुझे भी वहां बुलाया गया,
2: मौका मिला।
3: मैं नहीं चाहती थी पढ़ाना, लेकिन एक साल तक जब मैंने पढ़ाया, बच्चे बहुत खुश थे, हमारी मैम बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे लगता था मैं किसी और के लिए बनी हूँ। तो जब सिस्टर ने मुझे कहा, प्रिंसिपल मैम ने, कि आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, उसी समय मैंने अपना मन बना लिया और सिस्टर को कहा, सिस्टर मैं ये नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं रेडियो में मुझे कैजुअल अनाउंसर का जो प्रोग्राम है करने के लिए ज्यादा दिन देने पड़ते हैं, तो मैं यहाँ नहीं इतना समय दे पाऊंगी। उसके बाद सुभाष शर्मा जी मुझे कंपेयरिंग के लिए बुलाया करते थे खेल जगत कार्यक्रम के
2: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जी बिल्कुल।
3: हाँ, और बहुत उन्होंने मेरी भाषा में निखार लाने के लिए बहुत प्रयास किया और मैंने उनकी एक एक जो नुक्ताचीनी बिल्कुल मैंने सच्चे मन से उसको निभाया। बहुत से अच्छे लोग मिले इस दौरान और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, और वो सीख कर अगर आज आपको लगता है कि मादी किसी मुकाम पर वैसे तो नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ मैंने पूरी मेहनत से पूरे पैशन से अपने इस प्रोफेशन को निभाया है क्योंकि लाइव माइक्रोफोन मेरा पैशन था। मुझे बहुत मौके मिले, मेरे फादर मुझे केएस बनाना चाहते थे, फॉर्म भी भरवाया उन्होंने और मैं कर भी लेती क्योंकि मैं बहुत मेहनती थी, और जो पिताजी चाहते थे माताजी वो तो मैं करती ही करती थी, लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा पहले कि मैं नहीं करूंगी। उसी दौरान क्या हुआ कि जब मैं यहाँ कैजुअल अनाउंसर आया करती थी तो परमानेंट अनाउंसर्स की पोस्ट निकली, मैंने उनको बिना बताए फॉर्म भर दिया और भगवान की कृपा से रिटर्न क्लियर हो गया, ऑडिशन क्लियर होगी, उसके बाद पद्मा सचदेव जी बॉम्बे से आई, इंटरव्यू था, इंटरव्यू क्लियर हो गया। यहाँ पे हुआ करते थे मेहत्रा साहब हमारे स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे, तो कुछ महीने के अंदर अंदर हमारी अपॉइंटमेंट लेटर्स आ गई। जब लेटर हाथ में आ गई तो अब क्या कहूँ पापा को, मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया कि मैंने फॉर्म भरा था, मैंने रिटन टेस्ट दिया। जब रिटन टेस्ट देने आए कहते आज क्या था, मैंने कहा पापा आज ड्रामा की रिहर्सल थी। मैंने कहा भगवान मुझे माफ करना, मैं माता पिता के साथ कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन अपने पैशन को नर्चर करने के लिए मुझे वो जरूरी था, वो झूठ नहीं था, वो अपने पैशन की तरफ जो यात्रा शुरू की थी उसका एक पड़ाव था। तो उसके बाद जब लेटर आ गई हाथ में तो मैं ऐसे झूमती जामती हाथ में लेटर लिए हुए घर पहुंच गई, तो पिताजी कहने लगे आजकल क्या बात है माधवी, तुम्हारे पांव जो है जमीन पर नहीं लग रहे। मैंने कहा बात ही कुछ ऐसी है पापा। तो बड़े हैरान हो गए कैसी बात है, मैंने कहा खुद देख लीजिए। जब उन्होंने खोला और देखा तो कहते ओ छे क्या किया तुमने, मैंने कहा क्यों पापा, कहते मैं तो तुम्हें केस आईएएस बनाना चाहता था। मैंने कहा पापा जो हाथ में आया आप ही कहते हैं बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुशेस,
2: ले लो आप इसको,
3: जो हाथ में है उसमें तो करने दो मुझे, बाकी अगर किस्मत में होगा तो वो भी कर लेंगे। बट आई नेवर लुक्ड बैक क्योंकि मुझे मेरी मर्जी का काम मिल गया था। उन्होंने फिर एक मेरे लिए अड़चन पैदा की कि हमारे माशरे में लड़की को काम नहीं करने देते, तो तुम कैसे कर सकती हो, मैं हेड ऑफ द फैमिली नहीं हूँ, तुमको तायाजी से पूछना पड़ेगा। मैंने कहा बात ही कोई नहीं, तायाजी तो मेरे बहुत बड़े मुरीद है। मैं भाग के गई, मैं कहा तायाजी, कहते क्या बेटा बड़ी खुश है। मैं कहा मेरी नौकरी लगी। कहाँ, मैं कहा रेडियो स्टेशन। अच्छा बहुत अच्छे। तो मैंने कहा तायाजी पापा नहीं मान रहे, कहते कि नहीं करती हैं लड़कियां। ओहो राम को मैं खुद मना लूंगा, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, तुम जाओ। और मरते दम तक रेडियो ट्रांजिस्टर उनके सरहाने के नीचे होता था।
2: रेडियो की यात्रा यहाँ से शुरू
3: हो गई। 6 साल की उम्र से जो शुरू हुई थी वो अगले पड़ाव तक पहुंच गई।
2: इस दौरान काफी कुछ करने को मिला,
3: काफी कुछ करने को मिला, एक बहुत सुखद यात्रा थी। और कहते हैं जब तुम किसी चीज को अपना पैशन बना लेते हो, इश्क जुनून की हद तक उसको तुम चाहते हो, फिर तुम अपना 100% देते हो,
2: किसी हद तक सफलता मिल ही जाती है,
3: मिल ही जाती है, और फिर कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती।
2: हमारे रेडियो में जब अनाउंसर्स की बात करें तो शिफ्ट सर्विस होती है। हाँ। मतलब मॉर्निंग में, दिन में, इवनिंग, लेट इवनिंग, ये आपको करना पड़ा।
3: करना पड़ा। उसी दौरान मेरी शादी हो गई और हम 4 अनाउंसर्स सेलेक्ट हुए थे, उसमें मेरे जीवन साथी भी थे, मुझे नहीं पता था मेरे जीवन साथी बनेंगे, तो लेकिन वो केएस की हुई थी उन्होंने, उनकी रिट चल रही थी, तो उस दौरान डॉक्टर जैरत हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे, वो बहुत उन्हें चाहते थे क्योंकि वो उनके टीचर रहे थे, तो उनका जब तक तुम्हें वो नहीं मिलता यहाँ आ जाओ, यहाँ पे करो, तो वो सफर शुरू हुआ। लेकिन हमारी बरादरी में जो भी देखने आता था, डॉक्टर आता था, इंजीनियर आता था, प्रोफेसर आता था, लड़की तो पसंद है लेकिन नौकरी नहीं करवाएंगे। तो मैंने कहा पापा मैं ऐसे अपने साथी से जीवन कैसे काट सकती हूँ जो मेरी मेरे ही पैशन को दबाकर मुझे उस बंधन में बांधना चाहता है। मैं कहा मैं नहीं करूंगी, आप मान लीजिए शादी में उसी से करूंगी जो मुझे नौकरी करने देगा। तो वो बात चलती रही, हम काम करते रहे। इतने में जो मेरे हस्बैंड के जीजा जी थे, वो मेरे एल्डर ब्रदर के सीनियर थे केंद्रीय विद्यालय में, उन्होंने कहा कि हम आपकी बहन से अपने ब्रदर इन लॉ रिश्ते की बात, उन्होंने कहा मैं, मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं बड़ा जरूर हूँ इससे, लेकिन मैं अपने पिताजी से बात करूंगी। पिताजी कहे ना मैं नहीं मानता, हमारा जात बरादरी, हम महाजन है, वो ब्राह्मण है, हम नहीं करेंगे। भैया ने कहा ठीक है पापा मत करो, आप मत करो, लेकिन आपको कोई ऐसा लड़का नहीं मिलेगा अपनी बरादरी में जो नौकरी करने देगा, ये नौकरी नहीं छोड़ेगी चाहे पति को छोड़ देगी, मैं अपनी बहन को जानता हूँ। तो पहले पापा नहीं माने, तो कुछ देर के बाद उनको लगा कि भगवान जो निश्चित करता होता वही है, ये बहाने बनते
2: हैं,
3: ये पहले से तय होते हैं। तो हमारी शादी हो गई श्री सौजन्य शर्मा जी से। मेरी डोगरी में निखार लाने के लिए उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। वैसे भी उनके योगदान के बिना, मेरी सासू माँ के योगदान के बिना, मैं इतनी मुश्किल नौकरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नौकरी थी। लेकिन कुछ ही महीने पहले मैंने अपनी सासू माँ को खोया है। उन्होंने मेरी पूरी नौकरी करवा दी और थोड़ी सी रह गई थी, तो मुझे कहती थी कि मुझे बड़ा शौक है, जब तू रिटायर होगी तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी। तो अपने बेटे को कहती बड़ा सा गुलाबों का हार बनाना ताकि मैं इसको वो पहना के लाऊं। इसने बहुत अच्छी नौकरी की है, जो भी इसको इनाम मिलता था पहले मेरी झोली में डालती थी। तो मैं कहती थी बेटा ये तुम्हारा इनाम है, तो कहती थी ना अगर मम्मी आप नहीं होते तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंचती।
2: घर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, खासतौर पर महिला के लिए, अगर वो कोई नौकरी।
3: हमारे अंदर एक मेरे और मेरी मदर इन लॉ के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, MOU। जब मैं घर में होंगी वो रसोई घर में नहीं आएंगी, जब मैं घर में नहीं होंगी वो रसोई घर में आएंगी, संभाल लेंगी। और बहुत देर तक उन्होंने संभाला, जब थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब होने भी लगी, पर फिर भी बहुत हिम्मती थी वो।
2: इस दौरान माधवी जी रेडियो आप सुना करते थे जब घर में रेडियो?
3: वो तो मेरे मेरे वॉशरूम में, मेरे किचन में रेडियो हमेशा रहा। मेरे बचपन में वो होता था, उर्दू सर्विस पे आता था।
2: थोड़ा सा वो रिसर्च हमने किया तमिल रिशाद प्रोग्राम के बारे में,
3: मुझे बहुत अच्छा लगता था।
2: उन दिनों बहुत
3: और मेरे वादे कहते भी थे सो जाइए। मैं कहा पापा इसके बाद मैं उनसे मैंने उर्दू बोलनी सीखी थोड़ी। कहते ना ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड ब्रॉडकास्टर, तो वो सुनना जो बहुत जरूरी है एक अच्छा प्रसारक बनने के लिए।
2: बिल्कुल, पेशकश उनकी बड़ी लाजवाब, और उर्दू पे पूरी उर्दू पे पकड़
3: और आवाज का उतार चढ़ा बहुत कुछ सीखा मैंने।
2: अच्छा, आपकी नजर में रेडियो में अनाउंसर की कितनी अहमियत है?
3: बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे वरिष्ठ उद्घोषक के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं, और आपका एक मुकाम है, एक नाम है, आपको दुनिया जानती है। और आपने जब मुझे कहा कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, तो मेरे भी पांव जमीन पर नहीं थे, क्योंकि रमेश मराठा अपने आप में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो
2: शुक्रिया
3: उद्घोषक का। जैसे जहां तक आपने सवाल है कि मुझे तो लगता है आप जितने भी बेहतरीन प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन जब तक जो उसका सेल्समैन है, सेल्स गर्ल है, वो उसे अच्छी तरह उसकी आइसिंग, केक की जो आइसिंग होती है वो करके आगे पेश ना करे, तो वो प्रोग्राम जो है वो अधूरा रह जाता है, वो सजता समरता नहीं है।
2: आमतौर पे माना जाता है कि जब भी रेडियो स्टेशन कोई आता है तो वहाँ वो अनाउंसर को देखने के लिए, मिलने के लिए जरूर,
3: क्योंकि उनकी आवाज वो सुनते हैं और उनके मन में आंखों के जरिए उन्होंने एक छवि।
2: कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट आपका अपना कहीं होंगे? एक बताती हूँ, शेयर करेंगे हमारे सुनने वालों के लिए।
3: मैं अपनी ननद की बेटे की शादी पे अमृतसर गई हुई थी। तो अमृतसर के हमारे एक बहुत पुराने श्रोता हैं प्रेम सागर जी,
2: जी
3: वो हमारे आपका पत्र, आपकी फरमाइश में बहुत खतों खिताब
2: हमारे साथ भी उन्होंने कई बार बात की। बिल्कुल,
3: तो प्रेम सागर जी को पता नहीं उन्होंने ड्यूटी रूम में फोन किया तो किसने कहा वो छुट्टी पे है और अमृतसर गए हैं। प्रेम सागर जी मुझे फोन करने लगे, और वहां मैं अपनी फैमिली फंक्शन में बहुत बिजी थी, तो मैंने अपने पतिदेव को कहा कि कहते माधवी बिना जाए तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े आर्डेंट फैन हैं। तो मैंने उनको कहा प्रेम जी मैं अभी तो बिजी हूँ, आप बताइए आप कब मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगी, आप बताइए जब आप फ्री हैं, और जब मैं फ्री होंगी कि आपको सूट करता है वो हमने तय कर लिया। एक दिन थोड़ा सा विराम मिला फंक्शन से, तो मैंने सौजन्य जी को लिया और हम चले गए। आप झूठ मानेंगे, उन्होंने जहां पे उनकी दुकान थी उन्होंने पूरे एरिया में झंडियां लगाई हुई थी, और सबको बताया हुआ था कि माधवी आ रही है। मैं अपने आप में झेप गई और मैं समझ नहीं आई कि मैं कैसे फेस करूं। लेकिन इतना प्यार दुलार जब मिलता है ना, तो आपको किसी हद तक रमेश जी लगता है कि आपने जो बचपन से मेहनत की है आज वो सपना साकार हुआ, और वो मेहनत सार्थक हुई। हमें वो ढोल के साथ ढोल बज रहे हैं और हमें अपने घर तक ले गए प्रोसेशन में। घर में उनके वृद्ध उनके माता पिता थे, और बहुत बड़ा उन्होंने एक मोमेंटो बनाया हुआ था।
2: अच्छा।
3: मोमेंटो पेश किया, अपनी अर्धांगनी से मिलाया, जलपान कराया, और ये इस वादे से छोड़ा कि अब जब भी कभी आएंगे अमृतसर में मुझे जरूर मिलेंगी। अब वो अपने बेटे के पास फरीदाबाद भी जाते हैं, लेकिन वहां से भी फोन करते हैं हर बार, तुंदे फोन, तुंदे गीत या फोन इन तुंदी फरमाइश में, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय था। डोगरी संगीत का ये लाइव फोन इन प्रोग्राम था, और बहुत सालों तक मैंने किया, और बहुत संतुष्टि इससे प्राप्त हुई, क्योंकि एक पारस्परिक संबंध बन जाता है अपने लिसनर के साथ।
2: सही कहा।
3: गुलजार जी बहुत अजीम शायर और एक अजीम हस्ती, वो आए हुए थे जम्मू में और मैं छुट्टी पे थी, मैंने लीव ली हुई थी, तो मुझे लियाकत जी का फोन आया, आप मिलना चाहती हैं? मैं कही पूछने की बात है, कहते आ जाइए। आप मानेंगे नहीं मैं कैसे पहुंची वहां पे यूनिवर्सिटी में, और आमने सामने बिल्कुल इनसे बातचीत हुई, तो विश्वास ना हो कि हम
2: बातचीत कर रहे हैं।
3: बहुत बहुत ऐसी उनकी जो गाने हैं, जो उनके गीत लिखे हुए हैं,
2: उनका कहने का
3: उसका कोई सानी नहीं है, उनका अंदाजे बयान ही कुछ और है, तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह अपने आपको पता होगा कि मुझे बहुत सी कॉन्सर्ट्स करने का मौका
2: मिला,
3: बहुत सी कॉन्सर्ट्स मैंने, अनगिनत कॉन्सर्ट्स की। एक तो भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी, इस पे थोड़ी पकड़ थी, और भाषा पे माँ बाप बहुत ध्यान देते थे, हमने गलती की नहीं हमारे पॉइंट्स कटने शुरू हो जाते थे, और हम अगर पूरा दिन गलती नहीं करते थे हमें 10 पॉइंट्स मिलते थे, यानी 10-10 रुपए इकट्ठे होने शुरू हो जाते थे।
2: और सबसे खास बात ये रहती है कि आप अंदाजे बयां आपका कैसा है, वो आपके बैठे हुए हैं
3: आपके श्रोता हैं,
2: उनके दिल को छू जानी चाहिए वो बात।
3: आपकी भाषा की शुद्धता, आपकी भाषा की स्पष्टता आपको अलग मुकाम दिलाती है, और वही एक उद्घोषक का पहला एक प्रीरिक्विजिट होता है, उसकी आवश्यकता।
2: उच्चारण कहते हैं, उच्चारण कहते हैं। लाइव ट्रांसमिशन के दौरान कोई फनी इंसिडेंट जिसको आप याद करते हैं, हंसी आती है?
3: लाइव ट्रांसमिशन के दौरान हंसी भी आती है और
2: उसको रोकना भी पड़ता है,
3: हंसी को रोकना पड़ता है, और कई बार आपकी सिट्टी पिट्टी भी गुम हो जाती है।
2: जी बिल्कुल।
3: कई बार क्या होता है कि आप लाइव ट्रांसमिशन चला रहे हैं और कोई ऐसा प्रोग्राम जो हमें पहले टेप्स मिला करती थी,
2: बिल्कुल
3: आपको याद होगा, टेप हमें मिली और उसका कार्टन जो था उसके ऊपर लिखा था ये फीचर है,
2: इसमें है।
3: लेकिन हम पहले टेप चेक कर लेते थे कि उसमें क्या है,
2: ये जरूरी होता है।
3: हाँ, तो कुछ 2-3 मिनट पहले, क्योंकि बड़ी
2: भागदौड़ होती है,
3: और ट्रांसमिशन में उस दिन बहुत बिजी ट्रांसमिशन थी, मैंने 2-3 मिनट लगाया तो जो फीचर उस पर लिखा गया था कार्टन पे वो अंदर नहीं था। अब क्या किया जाए, फोन भी नहीं होते थे ऐसे जो आजकल काम करते हैं, आपके पास मोबाइल फोन तो थे ही नहीं, क्या किया जाए। अब अनाउंस नहीं मैंने अभी तक किया हुआ था, सुबह समरी में हुआ होगा तो मैं कह नहीं सकती, सेकंड ट्रांसमिशन की बात कर रही हूँ। फीचर इतने में मैंने 1 मिनट भाग के, आपको याद होगा कि मेरा जो प्राइमरी की हमारा स्टूडियो है
2: और लाइब्रेरी के साथ है,
3: तो मैंने अभी पहला वो प्रोग्राम चल रहा था भाग के गई, उसको कहा कि ये कार्टन अलग है और उसमें वो फीचर नहीं है जो मुझे बैसाखी पे चलाना है, उसको मैं कह के आ गई। तो मैंने कहा आप टाइम लीजिए, फीचर कहते 25 मिनट का, मैं कहा टाइम लेके मुझे दे डालिया, तब तक
2: अपने
3: लाइव अपने लिसनर्स के साथ जुड़ी रही और उनको अपनी अगली ट्रांसमिशन के प्रोग्राम्स के साथ अवगत कराती रही कि आप हमारी अगली ट्रांसमिशन में ये प्रोग्राम सुनेंगे, अगले दिन के कुछ खास प्रोग्राम जो उनके बड़े पसंदीदा कार्यक्रम है उनके बारे में बताती रही। इस तरह से मैंने 5 मिनट
2: पूरा किया,
3: थोड़े से हमारे जिंगल्स होते हैं उनको चलाया और कुछ ऐसे कुछ हमने लिखे होते हैं जो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा कर सकते हैं। 5 मिनट का समय बहुत होता है ब्रॉडकास्टिंग में, लेकिन भगवान की दया से वो हो गया और वो कार्टन चेंज होके प्रॉपर जो फीचर चलना था वो जब आ गया तो बैसाखी का वो फीचर एयर पे बने दे दी।
2: ये होता है अनाउंसर की जो कहते हैं ना हाजिर जवाबी और उसके
3: प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट,
2: बहुत जरूरी है। एक गाने की गुंजाइश है आपकी पसंद का कोई गाना?
3: गीत तो बहुत पसंद है मुझे, गीत संगीत ही मुझे इस स्टेशन में लेके आया, प्रसारण में लेकर आया, क्योंकि मौसिकी में म्यूजिक में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। लता मंगेशकर की आवाज में एक बहुत ही प्यारा गीत है फिल्म खामोशी का, हमने देखी है,
2: बहुत बढ़िया ये गाना हम आपको सुनाएंगे।
3: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आपका गॉडफादर कौन है रेडियो में?
1: गॉडफादर तो मैंने किसी को नहीं बनाया, सीखा सबसे, आप ही समझ सकते हैं। आपकी आवाज में जो एक उतार चढ़ाव था ना, उसकी भी मैं बहुत कायल थी। हमारे यहाँ अनाउंसर्स भी बहुत अच्छे थे, महमूद अहमद का नाम सुना होगा।
0: जी बिल्कुल।
1: फीचर प्रोग्राम दरीचे मैंने 23 साल तक किया, रमा बेटी का रोल था उसमें और गाना भी गवाया जाता था मुझसे, लेकिन इतने दिग्गज लोगों के साथ काम करने का जो
0: ड्रामेटाइज हुआ करता था जी,
1: दिग्गज लोगों के साथ काम करने का जो आभास था सुखद, वो मैं बयान नहीं कर सकती। 23 साल तक इट वाज लाइक अ फैमिली टू मी। हमने हर हफ्ते मिलना, पहले महमूद अहमद जी स्क्रिप्ट लिखा करते थे, उनके बाद जे एस परदेसी जी कितने साल लिखते रहे, के सी मन्हास, संजीव शर्मा, इन सब ने स्क्रिप्ट लिखे, लेकिन वो प्रोग्राम चलता रहा 23 साल तक। और वो क्या था, सामाजिक कुरीतियों पर आधारित प्रोग्राम था, जो समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां अपना सिर उठाती थी, उनको कैसे दूर किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, उस पर एक फीचराइज पारिवारिक रूपक हुआ करता था दरीचे। आपका पत्र फरमाइश कम से कम 15 साल तक किया, 18 साल तक प्रोग्राम किया। पत्रावली और आपकी पसंद 1.5 दशक से ज्यादा सालों तक किया। हमारे विविध भारती में कमल जी की मैं बड़ी कायल थी, कमल शर्मा जी बहुत अच्छा बोलते थे, भाषा पे उनकी पकड़ थी, उतार चढ़ाव भाषा का और लहजा उनका बहुत बेहतरीन, बेहतरीन प्रसारक थे, बेहतरीन उद्घोषक थे।
0: उनको आप लगभग सुना करते थे?
1: मैं सुना करती
0: हूँ। माधवी जी, अनाउंसर के लिए छूट होती है जब वो प्रोग्राम प्रेजेंट करता है, कोई भी प्रोग्राम हो, आपको ये छूट मिलती थी?
1: बिल्कुल सही कहा, स्काई इज द लिमिट। और ये एक अनाउंसर इंडिविजुअल के हाथ में है कि वो जो उसको 30 मिनट या 15 मिनट मिले हैं, उनका वो कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, ताकि एक एक शब्द जो है सीधे श्रोता के दिल तक पहुंचे, माइक से दिल तक। और जो ये कहते हैं ना, सीक्रेट को समझ जाता है, राज को समझ जाता है,
0: वही एक सफल अनाउंसर की श्रेणी में आता है।
1: मैं तो नहीं जानती कि मैं कितनी सफल हुई हूँ अपनी इस यात्रा में, लेकिन अपनी तौर से भरसक प्रयास किया कि श्रोताओं की उम्मीदों पर खरी उतर सकूं।
0: लिसनर्स का फीडबैक किस तरह मिलता था आपको?
1: कुछ लोग आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे एक नाबीना थे, आजकल वो गांधीनगर कॉलेज में लगे हैं और बच्चों के प्रोग्राम में आया करते थे, मुझे उनका नाम भूल, राहुल
0: जी,
1: आजकल वो असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक के हैं और बच्चों के प्रोग्राम में आया करते थे और बहुत अच्छा गाते थे। हाँ, जितना हम उनको उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमने कभी उसमें हिचकिचाहट ना दिखाई है और ना हमसे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि बच्चों से मुझे बहुत प्यार था। बच्चों का प्रोग्राम मैंने बहुत, 1988 में मेरी नौकरी लगी, उससे पहले से मैं प्रोग्राम किया करती थी और 2002 तक मैं करती रही। आप समझ लीजिए कितने सालों तक मैंने ये प्रोग्राम, 22-23 साल तक मैंने ये प्रोग्राम किया। तो
0: और बच्चों के प्रोग्राम को प्रेजेंट करने की खास बात ये रखनी पड़ती है कि आपको बच्चा बनना पड़ता है,
1: आपको बच्चे की लेवल तक आना पड़ता है,
0: तब
1: जाके बात बनती है। और बहुत लोकप्रिय प्रोग्राम था और मैं उसे बहुत एंजॉय करती थी, और लाइव प्रोग्राम हुआ करता था, रिकॉर्डिंग तो बाद में शुरू हुई।
0: राहुल जी बात कर रहे थे,
1: राहुल जी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन मैंने उनको ये कहना शुरू किया, पहले मैंने उनको ये कहती थी कि आपकी जो एक कमी है, आपने क्या उसको ठीक करने की कोशिश की? तो कहते थे बहुत देर से चल रहा है, चलिए देखते हैं। लेकिन कुछ जन्मजात ऐसे विकार होते हैं जो नहीं ठीक होते, पर बेहतरीन इंसान था वो। तो मुझे आप मानेंगे, मैं एक बार बच्चों के प्रोग्राम के बाद उसकी पढ़ाई शुरू हो गई, वो हमसे अलग हो गया, परेड कॉलेज में मैं किसी प्रोग्राम में गई हुई थी, तो मुझे वहां पे उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया हुआ था। मैं बैठी हुई थी तो किसी से बात कर रही थी, तो राहुल अपना ऊपर गाना प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मुझे तब तक पता नहीं था ये राहुल है। बातचीत करते करते अचानक वो ऊपर से स्टेज से कहते हैं, माधवी मैम बैठी हुई है हॉल में। तो मैंने कहा हाँ मैं माधवी हूँ। कहता मैम आपने मुझे पहचाना नहीं, जैसे उसने कहा, मैं कहा आप राहुल हो? कहता मैं राहुल हूँ। तो मुझे लगा, और उसको कहना मैम आज मैं आपकी पसंद का ही कुछ पेश करूंगा, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैंने, रेडियो में तो मैं आपको सुनता रहता हूँ, लेकिन ऐसे आपकी आवाज मैंने बहुत देर के बाद सुनी। जितना दुलार प्यार वो बच्चे करते, तो मैंने कहा तुम वो बहुत अच्छी गाते हो, मेहदी हसन की गजल, प्यार भरे दो शर्मीले नैन।
0: क्या बात है,
1: क्या खूबसूरत, उसने उसकी गजल की अदायगी का कोई सानी नहीं, कोई विकल्प नहीं है। और मुझे इतनी खुशी हुई, एक दिन उसका फोन हुआ, कुछ साल पहले आया, तो कहने लगा, मैंने उसका नंबर सेव किया, था मैं राहुल क्या हाल है, कैसे याद किया है, कैसी जिंदगी गुजर रही है? कहता मैम आपके बलबूते पर बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं कहा मेरा तो इसमें कोई योगदान नहीं है। मैम मुझे आपको कुछ बताना है, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर किया है,
0: क्या बात है,
1: नेट क्लियर किया पहले मैंने, अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया हूँ गांधीनगर कॉलेज में। मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा अपना बच्चा जैसे किसी मुकाम पर पहुंच गया है, और मैंने जाके भगवान को इतना शुक्रिया अदा किया, इतना ग्रैटिट्यूड पे किया कि एक बच्चा जिससे आपने कुछ ले लिया था उसको बहुत कुछ दे दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं भगवान कुछ अगर लेता है बहुत कुछ देता भी है, उसी चीज के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए।
0: माधवी शर्मा को कभी किसी प्रोग्राम को पेश करने में कोई चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं करूंगी और ये हो गया?
1: हाँ, इस दौरान बहुत से दिग्गजों को भी मैंने उनको होस्ट किया, चाहे वो उस्ताद अमजद अली खान हो, पंडित शिव कुमार शर्मा हो, बहुत से, आपको पता हमारे यहाँ जितेंद्र सिंह आए, राधिका चोपड़ा, सीमा अनिल सरोज, बहुत से,
0: यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह।
1: प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की तो मैंने नरेंद्र मोदी जी की
0: कई बार,
1: तीन बार मैंने लाइव किया है उनको होस्ट स्टेज पे, और पांच बार उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने होस्ट किया है। वो तो एक अपने आप में अलग एक अनुभूति होती है। लेकिन जब मुझे जम्मू से श्रीनगर बुलाया गया, एक उनका पिछली बार इसलिए वो श्रीनगर आ रहे थे, तो मुझे अटल डुल्लू जी के सेक्रेटरी ने फोन किया कि मैं चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ और डुल्लू साहब आपसे बात करना चाहेंगे। माधवी जी कैसी हैं आप? इनका सर बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। कहने लगे आपको श्रीनगर आना होगा नेक्स्ट फ्लाइट से। इनका सर क्या हो गया? मुझे पता था मोदी जी आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप होस्ट करो। मैंने कहा सर मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मान रही हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, मेरी अवेलेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि मैं उनके परमिशन के बिना नहीं आ सकती, तो आप हेड ऑफ द ऑफिस से बात कीजिए और मेरी अवेलेबिलिटी। उन्होंने उसी समय किया, तो फिर मुझे कहा गया कि हमें दिल्ली से लेनी है परमिशन, दिल्ली से भी ले ली गई और मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग श्रीनगर पहुंच गई, क्योंकि मैंने जम्मू में भी उनके बहुत किए थे, जम्मू में भी मैंने उनको होस्ट किया था। तो वहां जाकर ये लगा कि यहाँ भी बड़े बेहतरीन अनाउंसर हैं, इतनी उनकी अच्छी आवाज है, आवाज में उनकी इतनी खनक है, आपने इतने बेहतरीन प्रोग्राम अपने टाइम में किए हुए हैं, कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जिसको आपने होस्ट ना किया हो। लेकिन वहां जाके इतना जरूर तुम्हें महसूस होता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इसे ऐसा सुनहरी मौका मिला है,
0: ये बहुत बड़ी बात है,
1: और बहुत अच्छे से वो हो गया। तो आप सच मानेंगे ये बात मैं अपने श्रोताओं से आज पहली बार साझा कर रही हूँ। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होने को था तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आपकी गरिमा में उपस्थिति और आपके ओजस्वी मार्गदर्शन के लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच मानिए प्रधानमंत्री जी मेरे से तीन कुर्सी दूर थे, मेरी ओर मुड़े और कहने लगे बहुत अच्छे, ऐसे किया और आगे से अंगूठा किया, बहुत अच्छे। मैं एकदम से हिल गई कि एक प्राइम मिनिस्टर को क्या लगा कि वो किसी होस्ट को ऐसा बोले।
0: जी बिल्कुल,
1: लेकिन आपने गुरु महाराज का शुक्रिया भी मैंने अदा किया अपने आंखें बंद करके कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस काबिल नहीं थी लेकिन आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैंने एकदम से ऐसे किया, जब प्रधानमंत्री जी चले गए, चीफ सेक्रेटरी, सारे आईएएस ऑफिसर सब आके गले लगा रहे, कहते ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी होस्ट को प्रधानमंत्री जी ने किया हो। तो मुझे लगा कि मुझे रिटायरमेंट से पहले सबसे बड़ा तोहफा जो है वो मिल गया है।
0: जम्मू रेडियो के तीन ऐसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए जो आपको बेहद पसंद है, जो आप नहीं करते हैं कोई और करता है।
1: अच्छा, ये तो बहुत मुश्किल सवाल हो गया।
0: जिसको आप प्रेजेंट नहीं करते हैं कोई और प्रेजेंट करता है।
1: अच्छा जी, एक तो आप जो करते थे कठुआ स्टेशन से, वो बहुत मेरा पसंदीदा कार्यक्रम था,
0: यादें बन गई गीत,
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि एक अनाउंसर को अगर अपने लिसनर की जो कैप्टिविटी, उसको कैप्टिवेट करना है, उसके इंटरेस्ट को कैप्टिवेट करना है, उसकी तवज्जो हासिल करनी है, तो कैसे करनी है वो आपके हाथ में है। इसके अलावा हमारे यहाँ से ड्रामा निगार बहुत अच्छे हुए हैं, महमूद अहमद जी की लिखी झलकियाँ और उनकी पेशकश तो बहुत अच्छी थी, रीटा यूसुफ बहुत अच्छी अनाउंसर हुआ करती थी और बहुत अच्छा पंजाबी प्रोग्राम करती थी, मैं उनकी आवाज़ की बहुत कायल थी और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। उनके पंजाबी प्रोग्राम इतने मकबूल थे, मैं कहा करती थी कई बार मजाक से ही, अगर आप इनको LOC पर खड़ा कर दें तो पाकिस्तान और भारत में जो भी कुछ भी कमियां हैं,
0: खटपट
1: है, वो दूर हो जाएगी। ये तो मजाक की बात थी, लेकिन उनके चाहने वाले अक्रॉस द बॉर्डर बहुत लोग थे। हम पत्रावली और आपकी पसंद किया करते थे रमेश जी, मैं और नितिश, पत्रावली राखी पसंद जो युवानी सर्विस पे आता था, हमें पाकिस्तान से गिफ्ट्स आई पैक होके, वहां से हमको पार्सल्स आए। तो आप जान सकते हैं कि ये जो दूरियां हैं ये औरों ने बनाई है, आपस में कोई दूरी नहीं है, हमारा वही एक तरीकाकार है, हमारे रिवाज वही हैं, सब कुछ एक है।
0: और आवाज की कोई सरहद नहीं है।
1: आवाज की कोई सरहद नहीं, बिल्कुल सही कहा, आवाज की कोई सरहद नहीं है।
0: बिल्कुल, ये तो दो प्रोग्राम हुए, तीसरा प्रोग्राम बताइए।
1: तीसरा प्रोग्राम आप हमारे यहाँ से दरीचे प्रोग्राम, जो मैं तो खुद भी थी लेकिन पेश करने वाले महमूद अहमद जी थे, मैं उनकी भी बहुत कायल थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते थे। सुभाष शर्मा जी खेल पत्रिका कार्यक्रम करते थे, और वो पत्रिका कार्यक्रम क्या होता था, 9:30 बजे टेप चलनी होती थी, 8 बजे वो जागते थे उस अपनी नींद से, क्योंकि काम करके फिर 8 बजे
0: उन्होंने 5-10 मिनट करके वो कट्स लाते थे।
1: पर वो जो उनमें प्रोफेशनलिज्म था,
0: वो कमाल का था।
1: जो उनकी एंकरिंग थी, जो उनकी प्रोडक्शन थी, जो उनकी आवाज का इस्तेमाल था, उसका
0: लाजवाब था। एक गाना आपको हम सुनवाना चाहेंगे, कोई आपकी चॉइस। लता जी का तो गाना आपने सुनवाया खामोशी फिल्म से।
1: एक और गाना है बहुत पसंद है मुझे मुकेश की आवाज में, फिल्म आनंद का।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: वो कौन सा गाना है?
0: मैंने तेरे लिए ही सात रंग
1: के सपने।
0: क्या बात है, ये गाना हम आपको सुनवाते हैं।
2: मैंने

0: माधवी जी, हिंदू फिलॉसफी में पुनर्जन्म की बात होती है। अगर आपको दूसरा जन्म मिलता है तो क्या बनना चाहेंगे आप?
1: ये सवाल तो आपको, इसका जवाब आपको पता है मैं क्या दूंगी। मैं एक पुनर्जन्म क्या, जितने भी जन्म दोबारा लूं, मैं हर जन्म में एक प्रसारक ही बनना चाहूंगी। आवाज की दुनिया की रेडियो सखी माधवी ही बनना चाहूंगी। ये मेरे
0: हाँ,
1: दिल के बहुत करीब था, है और रहेगा, क्योंकि ये मेरा इश्क, जुनून, मेरा पैशन था, है और रहेगा।
0: इसके अलावा कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए रेडियो के दौरान जिसको आप कभी भूल नहीं पा रहे हैं, रेडियो अपनी सर्विस के दौरान।
1: हाँ, हमारे यहाँ से 10 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। आकाशवाणी एनुअल अवार्ड्स आयोजित हुए थे जम्मू में, उसको होस्ट करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। डीजी साहब आए हुए थे, डीडीजी आए हुए थे चार, तो वो लोग बहुत डरे हुए सहमे हुए थे कि जो पिछली बारी का आकाशवाणी एनुअल अवार्ड था वो कोलकाता में हुआ था, तो कुछ इतना उसमें कुछ खामियां रह गई थी। तो जब प्रोग्राम हो गया तो ब्रिजेश्वर सिंह हुआ करते थे डीजी, उन्होंने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि आज मैं इतना खुश हूं माधवी, मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे। और प्रोग्राम इतना स्मूथ गया, मेरे साथ रविकांत थे, वो हिंदी में कर रहे थे, मैं अंग्रेजी में कर रही थी, गुलाम नबी आज़ाद तब
0: मिनिस्टर
1: इंफॉर्मेशन एंड
0: हुआ,
1: ब्रॉडकास्टिंग
0: ब्रॉडकास्टिंग
1: मिनिस्टर
0: मिनिस्टर
1: थे।
0: थे जी।
1: तो बहुत जोरावर में ये प्रोग्राम हुआ था, बहुत दुनिया थी, बहुत बेहतरीन तरीके से ये प्रोग्राम हुआ। और जो मुझे संतुष्टि मिली कि जो लोग मुझसे तवक्को रखते थे उस पर मैं खरी उतरी, और ये प्रोग्राम मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी,
0: ये ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे।
1: क्योंकि आकाशवाणी एनुअल अवार्ड्स का जो एक दर्जा
0: बिल्कुल
1: है
0: सही कहा
1: वो अपने
0: आपने।
1: आप में बहुत ऊंचा है। और किसी भी स्टेशन के लिए उसे सफलता से होस्ट करना
0: ये बहुत बड़ी बात है, एक चैलेंज भी है।
1: चैलेंज था।
0: आपका मनपसंद उद्घोषक कहीं से भी?
1: रमेश मराठा जी तो मेरे मनपसंद उद्घोषक हैं, कमल शर्मा जी की मैंने बात की, उसके बाद एक और विविध भारती के अनाउंसर हैं, अमरकांत दुबे जी।
0: अमरकांत दुबे,
1: अमरकांत दुबे जी हमारे यहाँ से
0: जम्मू जम्मू
1: जम्मू
0: रेडियो से
1: के,
0: जी।
1: जम्मू शिव मोहन शर्मा बहुत अच्छे उद्घोषक रहे हैं। विपुल जी अपने टाइम के बहुत थे, क्योंकि वो डॉक्टर्स के साथ उनका बड़ा राबता था और बेहतरीन इंटरव्यूज लिया करते थे। गिरजा जी जो एक टाइम
0: बिल्कुल
1: में
0: सही कहा
1: पहली
0: आपने,
1: उद्घोषिका थी टीवी की,
0: उसके बाद रेडियो में आई हो
1: टीवी
0: जी।
1: की जब शादी हो गई तो फिर वो रेडियो में आई। उस समय टीवी का क्या जुनून था लोगों को, और वो बड़ी जितनी खूबसूरत थी उतनी खूबसूरत उनकी आवाज थी, उतनी ही खूबसूरत उनकी अदायगी थी। और मेरी कुलीग्स रही हैं रमनी शर्मा, सुनीता शर्मा, और अनाउंसर्स में तो सुनीता भगत बहुत अच्छी थी। एक नाम और ऐड करना चाहूंगी, रविकांत शर्मा अपने काम में बहुत मेहनत से काम
0: और
1: करते
0: डोगरी
1: थे,
0: भाषा में
1: डोगरी
0: उनकी
1: भाषा में उनकी बहुत
0: जबरदस्त
1: पकड़ थी,
0: पकड़ है,
1: जबरदस्त
0: इसमें
1: पकड़
0: सही कहा
1: थी।
0: आप। किसी भी महफिल में जब आप जाते हैं तो आपसे लोग ऑटोग्राफ लेते हैं।
1: आपको लगता है

0: लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम अभी भी वैसी ही हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैंने तुम्हें आवाज से, मैं कही तुम माधवी है तो तुम बदली नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ दिखाना जो आज तक मेरे पर्स में है। उन्होंने पर्स खोला और उसमें से वही 1 रुपए का नोट निकाला जिसमें मैंने ऑटोग्राफ दिया था।
1: मुझे लगता है कि ये एक अनाउंसर का सबसे खूबसूरत सरमाया है,
0: सरमाया बिल्कुल सही
1: उसके काम का। रेडियो सखी माधवी शर्मा क्यों और कब तक?
0: रेडियो सखी माधवी इसलिए क्योंकि रेडियो ने उसको सखी बनाया है, रेडियो ने उसे वो ख्याति दी है, रेडियो ने उसे पॉपुलर किया है। रेडियो जब तक है तब तक रेडियो सखी माधवी है।
1: बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक गाना आपकी चॉइस का हम सुनते
0: हैं। ये चॉइस आपकी होनी चाहिए, आप जानते हैं मेरी चॉइस। तो ये गीत मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी मर्जी का गीत चला दीजिए, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।

0: गया।
1: बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने के लिए बड़ी जुरत होनी चाहिए। मैंने वो जुरत की, मैं किस हद तक कामयाब रहा?
2: आप जिस हद तक कामयाब हैं ये हमारे सुनने वाले भी जानते हैं, और आपने कितनी संजीदगी से और कितनी बार मुझसे आपने कहा कि मैं एक करना चाहता इंटरव्यू, लेकिन कुछ कहते ना तुम इतने बिजी होते हो कि समय नहीं निकल पाता, पर आपने मेरा जो था ना वो काम जो था अधूरा नहीं रहने दिया, और मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने सोचा था वो कर दिखाया।
1: रेडियो के अंदाज में आप इस इंटरव्यू को क्लोज करेंगे।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे महफिल प्रोग्राम में, आज शरीके गुफ्तगू थे मेरे वरिष्ठ साथी श्री रमेश मराठा जी और मैं रेडियो सखी माधवी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया माधवी जी, आपने वक्त दिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे जीवन की कहानी को मेरी जुबानी श्रोताओं तक पहुँचाया। मैं आपकी

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अ कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: dala झेल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।
1: You are listening 90.0 FM, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का।

0: सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और सह कलाकारों की आवाज में दिल को छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।
1: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
2: तो कौन मांगता?
1: ए जूली जूली, जॉनी का

0: साथ तेरा मांगा सबको रिजेक्ट किया।
1: थैंक यू हनी, थैंक यू।
0: हमको लेली नहीं मांगता, हमको मैरी नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया चोली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: अजमेर। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
3: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
2: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
3: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
2: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
1: दिलों में

0: प्यार का एहसास जगा देता है, ये वो धागा है जो दूरियों को मिटा देता है। हम यहाँ सिर्फ गाने बजाने नहीं आते, हमारा मंच तो दिलों को दिलों से मिला देता है। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर, जो आपके हमसफर है जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी फरमाइश। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी,
1: और मैं हूँ आपके साथ कृष्णा। मेरे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार। भारत जी, आज का मौसम और हमारे श्रोताओं का मूड दोनों ही बड़े कमाल के लग रहे हैं।
0: बिल्कुल कृष्णा, आज का मौसम इतना गर्म है और इतनी गर्म हवाएं चल रही है, पर फिर भी जो हमारी कोशिश है, जो हमारे शौक होते हैं, वो कभी कम नहीं होते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर हफ्ते का वो दिन आ ही गया है जिसका हमें सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं कि जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, वो इससे महज एक गानों का प्रोग्राम ना समझे।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा भारत जी। हम यहाँ केवल आपकी फरमाइशें ही नहीं सुनाते, बल्कि हम तो दिलों को दिलों से जोड़ते हैं। ये सिर्फ आपके संदेश या संगीत की दुनिया ही नहीं है।
0: बिल्कुल सही। सच कहें तो आपकी हर फरमाइश में छुपा एक इकरार होता है, इसमें आपका अनमोल स्नेह और बेपनाह प्यार होता है। पल पल जो कटता है आपकी यादों के साए में, ये वो मीठा सा खूबसूरत सा इंतजार होता है। हमारे लिए आपकी फरमाइश आपका वही प्यार है, और वो हफ्ते भर का मीठा सा इंतजार है जो आप हमसे जुड़ने के लिए करते हैं। आपके इसी इंतजार को खूबसूरत बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं सदाबहार गीतों का एक बेहतरीन गुलदस्ता।
1: तो फिर देर किस बात की, आप अपनी धड़कनों को थामिए, चाय की चुस्कियां लीजिए और डूब जाइए शुरू के इस समुन्द्र में है। भारत जी और मेरे यानी कृष्णा के साथ शुरू करते हैं आज का सफर। आइए सुनते हैं आज की पहली फरमाइश, सीधे आप सभी के नाम। आज की पहली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव कुम्हार खेड़ा सहारनपुर से, भेजने वाले श्रोता हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब हसन। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म आराधना का गीत। गीत के बोल हैं बागों में बहार है, और गीत को अपनी आवाज से सवारा है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी ने। तो लीजिए, पेश है इन सभी की पसंद का ये प्यारा सा नगमा।

0: आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: आप श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से, भेजने वाले श्रोता है रवि कुमार राहुल। ये सुनना चाहते हैं फिल्म जिंदगी और तूफान का गीत। गीत के बोल है, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। इस गीत को आवाज दी है मुकेश जी ने। और रवि कुमार राहुल के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। आइए प्रस्तुत है इनका ये फरमाइशी गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं उषा कौशल जी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म मधुमती का गीत। गीत के बोल हैं सुहाना सफर और ये मौसम हसी, जिसे अपनी आवाज से संवारा है मुकेश जी ने। पेश है उनकी पसंद का ये फरमाइशी।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है नवी मुंबई से भेजने वाले श्रोता है सोनिया शर्मा और ये है सीबीडी बेलापुर से। ये सुनना चाहते हैं फिल्म छाया से गीत। गीत के बोल है इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा। आइए प्रस्तुत है सोनिया शर्मा जी का ये पसंदीदा गीत।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से। भेजने वाले श्रोता हैं विनय मोहन खारवन। ये सुनना चाहते हैं फिल्म दो चोर से गीत। गीत के बोल हैं, चाहे रहो दूर चाहे रहो पास। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। विनय मोहन खारवन के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता हैं मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी। लीजिए पेश है इन सभी की पसंद का ये गीत।

आप सभी की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से भेजने वाले श्रोता है पीएस नाहवकर। ये सुनना चाहते हैं फिल्म कोहिनूर से गीत, गीत के बोल है दिल में बजी प्यार की शहनाइयां। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। पीएस नाहवकर के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर और साथ ही मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर। और ये धन्यवाद भी करते हैं आप सभी श्रोताओं का, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें फरमाइशें भेजते हैं और हम कोशिश करते हैं कि आपके दिलों को हम दूसरे श्रोताओं के साथ जोड़ दें। तो आइए प्रस्तुत है इनका ये पसंदीदा नगमा।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव मंदेवर यमुनानगर से। भेजने वाले श्रोता हैं रणबीर, जगमाल, फूल सिंह, शमशेर, अंगराज और विकास पंजेता। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म हीर रांझा का गीत। गीत के बोल हैं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। इस गीत को अपनी आवाज से संवारा है मोहम्मद रफी जी ने। तो लीजिए पेश है इन सभी की फरमाइश का ये पसंदीदा गीत।

आप सभी श्रोताओं की नजर एक और फरमाइश जो हमारे पास आई है चंद्रपुरी अम्बाला कैंट से भेजने वाले श्रोता है मदन गोपाल सैनी जी, ये सुनना चाहते हैं फिल्म इजाजत से गीत। गीत के बोल है खाली हाथ शाम आई है। इस गीत को आवाज दी है आशा भोंसले जी ने। आइए, प्रस्तुत है मदन गोपाल सैनी जी का ये पसंदीदा नगमा।

पेश है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव बो अंबाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं राहुल अलियान। ये सुनना चाहते हैं फिल्म राजा और रंग का गीत। गीत के बोल हैं ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, जिसे अपने मधुर आवाज से सवारा है मोहम्मद रफी ने। तो लीजिए प्रस्तुत है उनकी पसंद का ये मीठा सा गीत।

आपको सुनाते हैं श्रोताओं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है पिंड तेजा मोड़ी अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता है बंशीलाल संधू। बंशीलाल संधू के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है कबीर सिंह संधू, जसबीर सिंह संधू, वरनीत कौर, पवनीत कौर और पूरा संधू परिवार। ये सुनना चाहते हैं फिल्म इज्जत से गीत। गीत के बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने और आइए सुनते हैं बंशीलाल संधू और उनके परिवार का ये पसंदीदा नगमा।

लेते हैं अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव करधान अम्बाला कैंट से। भेजने वाले श्रोता हैं संदीप शर्मा, ये सुनना चाहते हैं फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली का गीत। गीत के बोल हैं, ऐसे तड़पूंगी जैसे जल बिन मछली, जिसे अपनी मधुर आवाज से संवारा है लता मंगेशकर जी ने। पेश है इनका ये पसंदीदा मधुर सा गीत।

आपने ट्यूनिंग किया है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह जारी है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगर आप इस कार्यक्रम को आज पहली बार सुन रहे हैं तो आप भी अपनी फरमाइश इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम में आप किसी भी पुरानी हिंदी फिल्म का गीत, हरियाणवी या पंजाबी गीत की फरमाइश कर सकते हैं। आपको हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर गीत के बोल, फिल्म का नाम लिख के भेजना होगा। हम आपकी फरमाइश हर शुक्रवार दिन के 2 बजे पूरी करेंगे और उसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे होता है। आप अपनी फरमाइशें हमें भेजिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। इसके साथ ही आप सभी के लिए प्रस्तुत है अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से। भेजने वाले श्रोता है निसार सलमानी और ये सुनना चाहते हैं फिल्म बन फूल से गीत। गीत के बोल है मैं जहां चला जाऊं। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी साहब ने और निसार सलमानी के साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। और साथ में ये कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी आप सभी श्रोताओं का और निसार सलमानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप हमारे पास अपनी फरमाइशें भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी श्रोता ऐसे ही फरमाइशें भेजते रहेंगे। आइए प्रस्तुत है आप सभी का ये पसंदीदा गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। और अब हम लेते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश जो हमारे पास आई है हसीमारा वेस्ट बंगाल से, और भेजने वाले श्रोता है ममता राव। इनके साथ सुनने वाले अन्य श्रोता है श्रीनिवास राव और आध्या। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म खामोशी से गीत, गीत के बोल है तुम पुकार लो। इस गीत को आवाज दी है हेमंत कुमार साहब ने। आइए प्रस्तुत है इन सभी का ये पसंदीदा गीत, और इसके साथ ही आप हमें दीजिए इजाजत। मैं और कृष्णा हम आपके लिए हर शुक्रवार को लाते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। उम्मीद करते हैं कि अगले शुक्रवार को आपसे आपके नई फरमाइशों के साथ हम रूबरू होंगे और आप सभी श्रोताओं को वो गीत सुनाएंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
2: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
1: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
2: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
1: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
2: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
1: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
2: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
1: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
3: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
4: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
5: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
4: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
5: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
4: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
5: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
4: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
5: www.sdcollegeambala.ac.in।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
3: सही रास्ता, सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
4: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72,
3: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स,
4: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
3: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
4: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
3: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
4: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो।
2: सभी श्रोताओं का वो मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे कार्यक्रम राम राम हरियाणा, जो लाइव होता है हरियाणा के सामुदायिक रेडियोज पर। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आता होगा। अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप अपने बारे में कोई बात बताना चाहते हैं या कोई समस्या के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप बात कर सकते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से और हरियाणा सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए जुड़ने के लिए आपको डायल करना होगा नंबर 8816-904-904। और अम्बाला के सभी श्रोताओं को मैं कहना चाहता हूं कि आप जरूर जुड़ें इस कार्यक्रम में और अपना योगदान और अपनी हाजिरी जरूर इस कार्यक्रम में दें, जिसका नाम है राम राम हरियाणा। ये होता है सोमवार से शुक्रवार तक। और अब आज के बाद हम आपसे मिलेंगे सोमवार को। जी हाँ, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और मैं अम्बाला छावनी से FM 90.0 MHz पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हरियाणा के सभी श्रोताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और पटल पर मुझे जो दिख रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, गुरबिंदर सिंह जी और हमारे साथ एक पुलिस

0: जी हाँ, एक बार फिर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ भारत सोपोरी और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है राम राम हरियाणा। और मैं अपने आज दो मेहमानों का भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का स्वागत अभिनंदन। गुरविंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं रोज की तरह, स्वागत आपका भी और मैं हरियाणा के सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अपना रेडियो से हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये कार्यक्रम है राम राम हरियाणा जो आप सभी श्रोता सोशल मीडिया पर देखते और सुनते हैं और सामुदायिक रेडियोज पर भी सुनते हैं लाइव। और ये कार्यक्रम है राम राम हरियाणा, इसके लिए आप सभी श्रोताओं का मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आपने अपने जीवन में कुछ उत्कृष्ट कार्य किया उसके बारे में बताना चाहते हैं, या कोई समस्या है जो हरियाणा सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं, आप जरूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कॉल करें हमें हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 88 16 904 904। नंबर एक बार फिर 88 16 904 904। आज है 29 मई 2026 शुक्रवार और आज है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 2083 विक्रम संवत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इन दिनों गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है कुछ हिस्सों में, पर अंबाला में ना तो बारिश हुई ना गर्मी में कोई राहत है। और कल हमारे पास दो कॉल्स आई है जहां पे हमें बताया गया बहुत सारी बारिश हो रही है चरखी दादरी में, और बाद में ये भी बताया गया कि ओले भी गिरे, पर अंबाला तो सूखा का सूखा ही रहा। अभी उम्मीद है कि यहां भी बारिश होगी, वर्षा होगी और टेम्परेचर में कोई कमी होगी। हम इस कार्यक्रम में अपने बारे में, अपने काम के बारे में और अपने हरियाणा प्रदेश के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ जितेश पोसवाल जी जुड़े हैं एनजीएफ रेडियो पलवल से और हम सारे हरियाणा तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और मैं स्वागत करता हूँ वीरेंद्र सर का और वो आज के मेहमानों के बारे में भी बताएं। जी सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही मेरे पास।
1: भारत सोपोरी जी को राम राम, वितस्ता को राम राम। वितस्ता को ही क्यों, वितस्ता से लेके रेडियो अरावली तक वाया

0: दादरी अपना रेडियो पूरे हरियाणा को और हरियाणा के विभिन्न सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनने वाले मित्रों को मेरी यानी वीरेंद्र सिंह चौहान की भी राम राम पहुंचे। आज का कार्यक्रम हर दिन से थोड़ा भिन्न है। आज मुझे लगता है कि हमारे मेहमानों में कोई सरपंच नहीं है, पंचायती राज के कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन विषय बड़ा महत्वपूर्ण चुना है। आज प्रीतम जी की पहल पर ये विषय चुना गया है। प्रीतम जी अगर फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं क्या आपको भारत जी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ उनको।
1: नहीं, प्रीतम जी तो नहीं दिख रहे हैं, बट प्रीतम जी के स्टूडियो के हमारे पास दो मेहमान जुड़े हैं, जहां पर मुझे नाम दिख रहा है पीएसआई सोनिया, और मैं कहूंगा कि आप खुद ही अपना परिचय दें, क्योंकि मुझे यहाँ एक मिनट में बता देता हूँ नाम। सर हमारे साथ प्रीतम जी के स्टूडियो से जुड़े हैं दो मेहमान, और आप ये मान के चलिए कि ये प्रीतम जी की ओर से आज के हमारे मेहमान है।
0: जी, सभी मेहमानों का स्वागत एक बार फिर से हम कर देते हैं, और मैं यूं कहूंगा कि जो पुलिस महकमे से हमारे पास अधिकारी बैठी हैं उनका स्वागत करते हुए उन्हीं से कहते हैं कि शुरुआत करें अपने परिचय के साथ, और फिर हम आएंगे वकील साहब को भी हम देख पा रहे हैं उनको भी, उनसे फिर बात। विशेषज्ञ हैं जरा ये बता दीजिए, और जब बताएं तो ये भी बताइएगा वैसे मूल निवासी कहाँ की रहने वाली हैं, हरियाणा के किस हिस्से से आपका संबंध है। जी
2: नमस्कार। जी
1: नमस्कार।
0: जी जी नमस्कार।
2: हाँ जी सर, मैं पीएसआई सोनिया महिला थाना एसएचओ चरखी दादरी पोस्टिंग हूँ फिलहाल, और मैं मूल निवासी भिवानी की हूँ सर।
0: अच्छा, और भिवानी ने और क्या करें, चुप कर बोल रहे अगर भिवानी ने, भिवानी कौन कौन का है?
2: भिवानी
0: तो कोई कहता ही नहीं, भिवानी वाले तो भिवानी बतावे।
2: जी सर,
0: तो महिला थाना में आप हैं, आपके जिले में एक ही महिला थाना है अभी कि एक से ज्यादा हैं?
2: नहीं सर, चरखी दादरी में फिलहाल एक ही महिला थाना है,
0: और भिवानी में?
2: भिवानी में भी एक ही है सर, ऑलमोस्ट सभी छोटी डिस्ट्रिक्ट में एक ही है, कोई बड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही रेयर है सर, दो होंगे।
0: हाँ, कुछ एक स्थानों पर उपमंडल स्तर पर भी, जैसे हमारे यहाँ करनाल में असन महिला थाना। जी जी जी, और परिचय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, वकील साहिबा भी सामने हैं, एडवोकेट दिव्यता।
3: मैं अपना परिचय देती हूँ, मेरा नाम एडवोकेट दिव्यता है, और मैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की एक पैनल अधिवक्ता हूँ।
0: जी स्वागत है आपका, और दिव्य तो बहुत लोग मिले हैं, दिव्या भी बहुत लोग मिले हैं, दिव्यांगनाओं से भी परिचय हुआ है, लेकिन दिव्यता मुझे लगता है ये तो पहले हैं आप जो मिले हैं। आपकी दिव्यता को, आपकी भव्यता को प्रणाम, और आइए आज के विषय पर बातचीत शुरू करते हैं। और बातचीत हमें आज करनी है, जो मुझे बताया गया है कि हम पोक्सो अधिनियम पर बात करेंगे।
2: जी सर,
0: शुरुआत कहां से करना पसंद करेंगे? मुझे लगता है वकील साहब बताएं तो। जी
2: मैं बताती हूँ सर, पोक्सो के बारे में मैं बताना चाहूंगी सर।
1: जी प्लीज।
0: जी जी
2: हाँ जी, सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं पीएसआई सोनिया महिला थाना दादरी आज आपको पोक्सो अधिनियम के बारे में संक्षिप्त चर्चा करना चाहती हूँ। आपको इस अधिनियम के बारे में जागरूक करना ही हमारा बेसिक पर्पज है। यह अधिनियम सन 2012 में लागू किया गया था। इसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, जिसको हिंदी में यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 भी कहा जाता है। अब सबसे पहले यह सवाल उठता है कि यह अधिनियम क्यों बनाया गया। यह अधिनियम बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों को रोकने के लिए, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए बनाया गया, ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जा सके। यह कानून नाबालिग बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी, छेड़छाड़ के मामलों को, यह अलग अलग अपराधों के तहत अलग अलग सजा है, सजा का प्रावधान है इस कानून के तहत।
0: जी
1: जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है।
2: हाँ जी हाँ जी, यह इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। जेंडर न्यूट्रल यानी कि यह लड़का और लड़की दोनों के ऊपर इक्वली अप्लीकेबल होता है। यह कानून बेसिकली 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के लिए बनाया गया है, यानी कि सिर्फ लड़की ही के खिलाफ ही कोई अपराध हो तभी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अगर पीड़ित लड़का भी है और वो 18 वर्ष से कम है तो उसके खिलाफ, उस बच्चे के खिलाफ हो रहे जो अपराध के लिए इस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। दूसरी इस कानून की विशेषता यह है कि इसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सहमति को सहमति नहीं माना गया है कानूनन। सबसे बड़ा इसका जो विशेषता मुझे लगती है वो यह है कि अगर बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराध के बारे में अगर कोई इंसान पुलिस को सूचित नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी सजा का प्रावधान है। यानी कि अगर बच्चों के खिलाफ कोई अपराध हो रहा है हमारे आसपास और हमारी नजर में है तो हमें उसको बताना, उसके बारे में पुलिस को बताना या संबंधित विभाग को सूचित करना सिर्फ मौलिक जनरल अधिकार या अवेयरनेस नहीं है, कानूनन प्रावधान है कि आपको उसको बताना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपके खिलाफ भी सजा का प्रावधान है। इसमें बच्चे को ताकि सहज महसूस करवाया जा सके, जैसे कि हम जानते हैं 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा इतना ज्यादा सहज नहीं होता है अपने साथ हो रहे गलत व्यवहार के बारे में बताने के लिए, तो इसमें पुलिस अधिकारी स्पेशली अगर फीमेल है अगर बच्चा तो महिला अधिकारी ही सिविल क्लोथ्स में यूनिफॉर्म में इस मुकदमे में कार्रवाई नहीं होती है, प्लेन क्लोथ्स में कार्रवाई होती है ताकि बच्चे को सहज महसूस करवाया जा सके।
0: जी हाँ, तो दो नए, एक तो नया शब्द आपने बोला कि ये जो कानून है बच्चों के विरुद्ध जो यौन शोषण के अपराध होते हैं उनको हैंडल करने के लिए ये कानून बनाया गया। और मुझे लगता है जो दिल्ली का जो एक बड़ा विभत्स प्रकरण था उसके बाद ये नया कानून, ये नए प्रावधान हम लोग लेकर के आए, सरकार लेकर आई। और इस कानून को लेकर जो आपने शब्द प्रयोग किया कि जेंडर न्यूट्रल है,
2: हाँ जी,
0: जेंडर न्यूट्रल, श्रोता मित्रों, जेंडर न्यूट्रल अर्थात केवल लड़कियों के साथ यौन दुर्व्यवहार उसकी चिंता ये कानून नहीं करता। अगर जो पीड़ित है वो लड़का भी है, माने लिंग भेद का प्रश्न नहीं है, लड़का अथवा लड़की जो पीड़ित है लिंग भेद के बिना उसे ये कानून संरक्षण देता है और दोषियों को सजा देने का प्रावधान करता है। मुझे एक और जो नई बात ध्यान में आई, मुझे लगता है उसको दोहराने में कोई हर्ज नहीं और वो काम की बात है, भरत जी इस बात से सहमत होंगे कि वैसे तो हर नागरिक को हर होने वाले अपराध के बारे में वो पुलिस को, लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज को सूचना दे जब उसको उस अपराध का पता चले, ये अपेक्षित है किसी भी सभ्य नागरिक से। परंतु बच्चों के विरुद्ध होने वाले यौन दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, जो भी उसके लिए सही शब्द है, बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध की स्थिति में आपको अगर मालूम है और आप उसकी सूचना नहीं देते तो साहब आप भी अपराधी हैं। और मैं ये जानना चाहूंगा, भले ही वो दिव्यता जी बता दें या सोनिया जी बता दें, कि ऐसे नागरिक जो बाल उत्पीड़न हो रहा है और उसकी सूचना नहीं देते, उनके लिए कानून में एग्जैक्ट प्रोविजन क्या है, बिल्कुल सटीक प्रावधान क्या है, किस सूरत में न सूचना देने वाले लोग वो कानून की लपेट चपेट में आएंगे ही आएंगे, और जब आएंगे आपने कहा सजा का प्रावधान है तो अधिक से अधिक कितने टांगे जाएंगे, कितनी क्या दंड का प्रावधान क्या है इस लॉ में, मुझे लगता है दिव्यता जी बताना चाहेंगी।
3: जी सर। सर सबसे
0: पहले तो एक सेकंड, सोनिया जी दिव्यता जी को कुछ कहने दीजिए, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। जी
3: सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर नागरिक की ड्यूटी होती है कि अगर किसी बच्चे के साथ अगर यौन अपराध हुआ है, किसी बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है, तो उसकी जानकारी हमें देनी चाहिए।
0: जी
3: उदाहरण के तौर पर ज्यादातर जो बच्चे हैं 18 साल से कम उम्र के स्कूल में होते हैं, तो स्कूल में जब बच्चे होते हैं तो सबसे सर्वप्रथम बच्चे या तो अपने माता पिता को बताते हैं या अपने टीचर्स को बताते हैं इसके बारे में, उनको बता सकते हैं जो अध्यापक गण उनको पढ़ाते हैं, तो वहां पर उनकी ड्यूटी बनती है कि अगर बच्चा उनको आके बताता है कि हमारे साथ घर में या घर से बाहर कोई भी यौन शोषण की कोई भी घटना अगर हमारे साथ हुई है, तो वो लोग बाउंड हो जाते हैं बताने के लिए,
0: पूरी थोड़ा ठीक करो,
3: उनको बताना ही होता है। अब बात आती है कि सजा की, आप जहां पूछ रहे थे कि सजा क्या हो सकती है, तो देखो अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर नहीं है, किसी व्यक्ति को बच्चे के साथ हुई यौन शोषण की जानकारी है, तो हमारे पोक्सो एक्ट के प्रावधान के हिसाब से उसको 6 महीने तक की सजा और फाइन दोनों उसके ऊपर लागू होते हैं। और अगर वो किसी पोस्ट पे है, किसी रैंक पे है, और अगर फिर उनको जानकारी है बच्चे के साथ हुई अपराध की और फिर वो नहीं बता रहे हैं, तो उनको जो सजा है वो 1 साल की और प्लस में फाइन, ये सजा का प्रावधान हमारे एक्ट में दिया गया है। अन्य किसी भी एक्ट में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है कि आपको क्राइम की जानकारी अगर है, आपने नहीं बताया, तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी, आपके ऊपर कोई सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन यही एकमात्र एक्ट ऐसा है जिसके अंतर्गत अगर आपको जानकारी है अपराध की और आप नहीं बता रहे हैं, तो आप सजा के पात्र बनते हैं। इसके साथ ही इसी एक्ट में अगर आप झूठी जानकारी भी अगर दे रहे हैं, तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान दिया गया।
0: माने झूठी शिकायत कर रहे हैं?
3: जी सर।
0: अच्छा, यहाँ महिला थाना प्रभारी हमारे साथ हैं, हर दिन ऐसे मामलों को आप देख रही होंगी। महिला थाना के SHO के रूप में आपका कितना अनुभव हो गया है सोनिया जी?
2: सर 3 साल हो गए हैं।
0: 3 वर्ष हो गए हैं। तो आए दिन इस तरह के मामले कम या ज्यादा संख्या में आपके संज्ञान में आते ही होंगे, जिनमें आपको जांच भी करनी है, जिनको आपको अदालत तक ले जाकर दोषियों को दंडित कराना, वो भी आपका दायित्व है। नए कानून के प्रावधानों को लेकर नागरिकों में जागरूकता कितनी है, और वो आप कितना महसूस करते हैं? जो लोग आते हैं आपके पास साधारणतया पीड़ित पक्ष के लोग, तो क्या वो जब आते हैं उनको कानून के प्रावधानों का आमतौर पर पता होता है कि आप लोगों को और चीजें बतानी ही पड़ती हैं उनको?
2: नहीं सर, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ अनएजुकेटेड लोग आते हैं, उनको नहीं पता होता कानून के बारे में या प्रावधानों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में। कुछ जनरली एजुकेटेड लोग ऑलरेडी अवेयर हैं, इसी के इनको जागरूक करने के लिए हम लोग स्कूल कॉलेजेस में जाकर गांव-गांव में अवेयरनेस प्रोग्राम करवाते हैं, ताकि उनको उनके लीगल राइट्स के बारे में और नए लॉज के बारे में जानकारी दी जाती है उनको टाइम टू टाइम।
1: जी, इस समय हमारे साथ FM भारती भी वॉइस के माध्यम से जुड़े हैं, और बहुत सारे लोग इस समय मैडम सोनिया और दिविता मैम आपको सुन रहे हैं लाइव अलग अलग जगहों पर। जैसे आप इस समय लाइव है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अपना रेडियो चरखी दादरी नारनोल से आप लाइव है, रेडियो गोंदर से आप लाइव है। आज का जो विषय है बहुत ही संवेदनशील है, और मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी जानकारी हम लोगों को दे पाए। मुझे लग रहा है कॉल आ रहा है सर।
0: नहीं, कॉल तो आज सारे मेरे पास पहुंचेंगे, लेकिन नहीं आ रहे मेरे पास।
1: जी, तो मैं ये कह रहा था कि यह बहुत ही संवेदनशील मसला है, और इसके बारे में जितना भी हम लोगों को जागरूक कर सकें उतना बहुत अच्छा है। और मैडम सोनिया जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि ये जो कार्रवाई होती है ये सादा वर्दी में होती है, अगर कहीं पर कोई घटना घटी और ना तो बच्चे ने उसके बारे में बताया, ना उसके आसपास जो लोग हैं जिनको बताना चाहिए था, उस सिचुएशन में क्या होगा? बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, बच्चे को परेशानी हो सकती है अगर वो अपने माँ बाप से, अपने टीचर से बात नहीं कर पाता, ऐसे केस में आप क्या समाधान ढूंढते हैं?
2: देखिए, ऐसे केस आते हैं जब बच्चा इतना, क्योंकि छोटी, जैसे कि हमने डिस्कस किया, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बारे में डील करता है ये अधिनियम, तो बच्चे इतने वल्नरेबल होते हैं कि वो अपने साथ हुए गलत अपराध के बारे में डरते हैं, और अपराधी इतना सजग होता है वो बच्चों को ऑलरेडी डरा के रखता है कि आपने इसके बारे में किसी को बताया तो आपको ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ही अपने बच्चों को अवेयर करना होगा। सबसे पहले तो छोटे, जब बचपन में ही हमें उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले। छोटे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनको इस जगह से छूना अपराध है और इस जगह से छूना सही नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, तो उनको पता रहेगा कि इस पर्सन ने मेरे को गलत जगह पर छुआ है, और वो उस बारे में आपको बता पाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि बच्चा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इसका सबसे मोटा मोटा जो फंडा मुझे समझ में आता है वो यही है सर, कि हमें अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना चाहिए, ताकि उसके साथ कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी हो रहा है, वो आपको डे टू डे लाइफ में आके आपको बता सके। और मैं ये पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप डेली बच्चों के लिए 5-10 मिनट जरूर निकालें, जैसे ही वो चाहे स्कूल में हो, कॉलेज से आए, आप अपने बच्चों से बात करें। आज के इतना बिजी शेड्यूल है सभी का, हम समझते हैं, लेकिन अपने बच्चों से आज के टाइम में बात करनी बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डिप्रेशन के शिकार बहुत ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स बिजी हैं, अपने अपने सब वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे घर के काम में भी मैंने देखा है कि जो लोग घर पे काम करते हैं वो भी अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हमें अपने बच्चों से बातचीत करनी होगी ताकि वो अपने साथ हुए कुछ भी गलत हो रहा है उसके बारे में आपको बता सके।
1: बहुत क्लियर
0: भारत जी।
1: जी सर,
0: भारत जी हमारे साथ कर्मवीर जी भिवानी जिले से जुड़े हुए हैं और वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं आज नीलोखेड़ी स्थित अपने स्टूडियो से ही उनको कनेक्ट कर रहा हूं आपके साथ।
1: जी जी।
0: कर्मवीर जी का सवाल हम ले लेते हैं।
1: जी आप
0: कर्मवीर जी।
4: सर जी
0: आप सुन पा रहे हो मुझे?
4: बिल्कुल सर जी, बिल्कुल आवाज आ रही है जी।
0: भारत जी आपका काम कर्मवीर जी की?
1: जी जी आ रही, आई आ रही आवाज।
0: हाँ कर्मवीर जी सवाल पूछिए अपना। आप आज के जो हमारे दोनों मेहमान हैं जो कानून के रक्षक और कानून के विशेषज्ञ इस रूप में हमारे साथ हैं, दो नारी शक्ति की प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, क्या पूछना चाहेंगे उनसे आप?
4: सर जी मेरा तो एक अटके सवाल था थोड़ा।
0: अटके?
4: हाँ जी, मैं कल अपनी ये प्राकृतिक आपदा आई हुई है, कल ओलावृष्टि बहुत हुई है और गांव में अच्छा नुकसान हुआ है खासा।
0: हाँ हाँ,
4: घर भी फट गए, कई अपने साइड थे गांव में वो भी उखड़ गए।
0: जहां तक प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान की बात है, सरकार के अलग अलग महकमों के अलग अलग प्रावधान हैं और खासतौर पर इसमें खेती का अगर कहीं नुकसान हुआ है तो क्षतिपूर्ति का जो पोर्टल है उसके माध्यम से सरकार राहत देने की कोशिश करती है। आपके गांव में जो नुकसान हुए हैं उनकी पंचायत के माध्यम से जिला प्रशासन तक सूचना जरूर पहुंचाएं और इसमें कहां क्या हो सकता है इस पर मैं भी थोड़ा सा पड़ताल करके कल के कार्यक्रम में फिर आपको अपडेट दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: ठीक है जी, ओके सर
1: जी, जी। मैं जितेश जी से भी कहूंगा कि वो भी अपना प्रश्न तैयार रखें। मैं मैडम सोनिया जी और देविता जी से, दोनों से एक प्रश्न करना चाहूंगा आगे चलने से पहले, कि आप दोनों का समन्वय यानी कि जो पुलिस थाना है और एडवोकेट है, आप दोनों का समन्वय ऐसे केसेस में किस तरीके से होता है, चाहे वो देविता जी हो या कोई और हो, तो किस तरीके से पुलिस का और जो लॉ जो जानने वाले हैं उनका जो समन्वय वो किस तरीके से होता है?
0: डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की भूमिका पर इसमें प्रकाश डाल देना चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा सा और इलैबोरेट होगा क्या कर? जी
3: सर मैं यही बताना चाह रही हूँ, मैं जैसे यहाँ रिप्रेजेंट कर भी रही हूँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर स्तर पर काम करती है। सबसे पहले हमारा जो सबसे मेन उद्देश्य वो यही है, जागरूकता फैलाना। हर महीने, हर हफ्ता या आप कह लीजिए हर रोज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से जागरूकता कैंप लगते हैं, जिसमें पोक्सो हमारा एक बहुत मेन टॉपिक रहता है। शायद ही चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट का कोई स्कूल ऐसा रहा होगा जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से पैनल अधिवक्ता और हमारे पैरा लीगल वॉलेंटियर ना गए हों। बार बार वहां पर पढ़ने वाले बच्चों को पोक्सो एक्ट और साथ ही साथ जेजे एक्ट के बारे में बताने के लिए हर जगह यही प्रयास रहता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का कि बच्चों को पता हो। सबसे पहली प्रॉब्लम जो पोक्सो एक्ट में जितने भी केसेस आते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे के साथ अगर अपराध हुआ है तो बच्चे को पता ही नहीं है कि उसके साथ अपराध हुआ है। सबसे पहली बात तो उसको पता होना चाहिए कि जो उसके साथ हो रहा है वो एक्चुअल में अपराध है। हम जाके बच्चे को यही बताते हैं कि बेटा ये जितनी भी कैटेगरीज हैं अगर इनके अनुसार आपके साथ कोई भी गलत काम हुआ है तो वो अपराध की श्रेणी में आ रहा है। जब हम बच्चे को ये बताते हैं तो उसको कोई ना कोई बच्चा ऐसा कहीं ना कहीं होता है जो इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हो या ऐसी समस्याओं को वो देख रहा हो या उसका कोई साथी, उसका कोई जानकार, उसका कोई दोस्त वैसी समस्याओं का उन्होंने जिक्र किया हो। उनको पहली बात तो समस्या के बारे में हम अवगत कराते हैं, उसके बाद उनको ये बताते हैं कि अगर बेटा ऐसी समस्याएं हो रही है तो आप शिकायत किसको करोगे। अब बच्चा है वो पुलिस के पास नहीं जाता है तो उनको बताते हैं कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप अपने टीचर को बताइए, आप अपने पेरेंट्स को बताइए। कई बार बच्चे पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते हैं, उनको डर लगता है क्योंकि आप देखेंगे कि ज्यादातर मामले वो होते हैं जहां पर घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा ही बच्चों के साथ यौन शोषण किया जाता है। भारत में खासकर अधिकांश मामले ऐसे सामने आए हैं कि परिवार वालों के द्वारा ही बच्चों का शोषण किया जाता है। तो बच्चों को बताया जाता है कि बेटा आप लोग अपने अध्यापक गण, अपने प्रिंसिपल, आप लोग इनसे बताइए और साथ साथ डीएलएस से सभी टीचर्स के प्रिंसिपल के समय समय पर उनकी भी वर्कशॉप उनकी भी ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपके स्कूल में पढ़ने वाला छात्र अगर वो अपने आप से बता भी नहीं रहा है तो क्या ऐसे सिम्टम्स आप लोगों को देख के आप पता कर सकते हैं कि वो बच्चा यौन शोषण से पीड़ित है। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत ब्राइट है लेकिन एकदम से सडनली उसका पढ़ाई से मन हट जाता है, खेल कूद में मन नहीं लग रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये ड्यूटीज हमारे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स की होती है, माँ बाप की तो होती ही होती है, वो तो अपने लेवल पे करते ही है, देखते ही है, लेकिन स्कूल में भी हम लोग क्योंकि डीएलएसए की तरफ से उनको इस चीज के बारे में बताते हैं कि आप लोग देखिए आपके स्कूल में बच्चे का कोई बिहेवियर ऐसा आया है, और आप यकीन मानिए ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं, हमें फोन भी आता है और हमें टीचर्स बोलते भी हैं कि हमें किसी बच्चे का बिहेवियर अलग लग रहा है, और हमने जब बच्चे से पूछा तो उसने बताया कि उसके घर के परिवार का कोई सदस्य उसके साथ यौन शोषण जैसी घटनाएं कर रहा है। तो डीएलएसए का रोल जो है सर वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर। रही बात जब डीएलएसए के बाद उसके बाद डीएलएसए क्या करती है, जब बच्चा पुलिस थाने में पहुंचता है या बच्चे की तरफ से शिकायत जाती है टीचर के द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा या किसी भी थर्ड पर्सन के द्वारा, जब पुलिस में शिकायत जाती है तो वहां पर हमारा काम ये शुरू हो जाता है कि सबसे पहले बच्चे को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा एक फीमेल काउंसलर प्रोवाइड किया जाता है। वहां पर सबसे पहले वो काउंसलर बच्चे से बात करते हैं, उनको इजी फील कराते हैं, उनको बताते हैं कि जो चीजें हो रही है वो कानून की नजरों में क्या है, आपके साथ अपराध हुआ है, उनकी ही काउंसलिंग नहीं करते, उनके माँ बाप की भी काउंसलिंग करते हैं कि वो डरे नहीं। सबसे ज्यादा उनको डर होता है कि अगर हमारे बच्चे के साथ, खासकर अगर लड़की है, उसके साथ कुछ हुआ है तो कहीं बदनामी ना हो जाए, इस डर से वो लोग शिकायत नहीं करते। तो हम ये भी बताते हैं कि पॉक्सो के जितने भी मामले होते हैं उसमें जिस बच्चे के साथ अपराध हुआ है उसका नाम कहीं किसी डॉक्यूमेंट में नहीं आता है, ना उसके परिवार का नाम, ना उसके गांव का नाम, उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता है, और इसके लिए बहुत ही सख्त नियम लागू है। खासकर मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा सख्त नियम लागू है, बताए गए हैं कि किसी भी बच्चे की जिसके साथ यौन शोषण हुआ है उसके स्कूल का नाम, उसके गाँव का नाम, उसका एड्रेस, उसका नाम, उसकी कोई भी आइडेंटिटी जो है पब्लिकली नहीं की जाती। तो माँ बाप इससे थोड़ा सा उनको भी ये लगता है कि हाँ ये ठीक है। दूसरा, उनको बताया जाता है कि बहुत फास्ट ट्रैक यहाँ पर काम होता है, ऐसा नहीं है कि आपने शिकायत की है तो बहुत लंबे समय तक ये काम चलता रहेगा। ये सारी चीजें डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता द्वारा जो काउंसलिंग के टाइम पे आते हैं उनको समझाई जाती है, उसके बाद वो लोग इजी होते हैं और जो उनके साथ घटना हुई है उसको सही क्रम में वो पुलिस के सामने पेश करते हैं। यानी कि स्टेटमेंट होने से पहले उनको लीगली थोड़ा सा समझाया जाता है, उनको बताया जाता है, और साथ ही साथ उनको ये भी बताया जाता है कि आप किसी के खिलाफ भी गलत शिकायत ना करें। यहाँ पर भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। कई बार बहुत ऐसे मामले सामने आते हैं इसमें पता लगता है कि हाँ कई बार लोग क्या करते हैं कि क्योंकि किसी भी एक्ट का दुरुपयोग कहीं भी किया जा सकता है, तो उनको ये भी समझाया जाता है कि अगर आप किसी के खिलाफ गलत शिकायत भी अगर आप कर रहे हैं, झूठी शिकायत भी अगर आप कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जी सर बताइए।
0: जी हमारे साथ दादरी से ममता जी जुड़ी हैं, और ममता जी अगर आपका प्रश्न, आपको मेरी आवाज मिली रही होगी मैं ये मान के चल रहा हूं, और मैं मुझे अच्छा लगेगा अगर ममता जी का जो सवाल है वो आज के विषय से सीधा जुड़ा हुआ हो। ममता जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी?
5: पहुंचती है।
0: और स्टूडियो तक और भारत जी तक आवाज?
1: जी जी पहुंच रही है।
0: ठीक, टनाटन आवाज आ रही है ना?
1: जी, जी। हाँ,
0: ममता जी पूछिए, आज के मेहमानों से सवाल है आपका कुछ?
5: सर मैं तो ये बात ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चा लड़कियाँ जब पढ़ाई के लिए जाती है या घर से कुछ सामान लेने के लिए जाती है, वहां से अगवा करके उनकी दुष्कर्म किया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है, उस अपराध के लिए क्या सजा होगी, कैसे पता लगेगा?
0: फांसी तो कम तो क्यों होनी चाहिए, कानून में प्रावधान तो ऐसा ही है, इस तरह के दुष्कर्म जो बेटियों के साथ कोई कर रहा है उसके लिए कानून में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। इस पर हम यहाँ पर सोनिया जी हैं, उनकी जुबान से सुनना चाहेंगे कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले या यौन उत्पीड़न करने वाले जो अपराधी हैं, दैत्य हैं, हम उन्हें असुर कहें, दैत्य कहें, शैतान कहें, उनके लिए जो शब्द, मुझे लगता है उनके लिए शब्दों का तोड़ा पड़ सकता है डिक्शनरी में, इस तरह के अमानुषिक काम करने वालों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कानून में, और पोक्सो की बात आज हो रही है तो पोक्सो में सजा का कितना प्रावधान है। एक अच्छी बात जो मुझे लगी जो वकील साहिबा ने कही कि समाज में एक भाव ये है कि के करांगे शिकायत करके सजा तो होनी नहीं, अदालतों के चक्कर खा खा के मारे जाओगे। माने एक तो पहले उत्पीड़न हो गया और फिर ऊपर से पता चला कि ना पुलिस उस तरह से अपना काम कर रही है जैसे उसको करना चाहिए, और कुल मिला के कहना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी अदालतों को लेकर भी लोगों के मनों में ये धारणा रहती है भाई को नहीं मिलना न्याय, क्या ना दुखी हो, क्यों गोडे तोड़वा हो, पहले मरे पड़े हो। तो जो बात निकल करके आई कि नहीं साहब फास्ट ट्रैक पर होता है ये अपने, हाँ मैं पहले आप कह लीजिए फिर पूछूंगा मैं सोनिया जी से। जी बताइए।
5: गरीब आदमी तो
0: चलिए ममता जी बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से समाज की एक चिंता को सामने आई है मुझे। मैं चाहूंगा पहले इस पे सोनिया जी टिप्पणी करें और वकील साहब आप भी फिर इसमें जोड़िएगा। तस्वीर को साफ करने की कोशिश करते हैं, कानून में प्रावधानों की कोई कमी नहीं है, गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, बेटे के लिए भी है, बिटिया के लिए भी है, छोटे के लिए भी है, बड़े के लिए भी है। लोग नहीं जानते ना, क्या कहते हैं सोनिया जी, सजा कैसी कैसी मिलती है, कितनी सजा हो सकती है अधिकतम?
2: जी मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। अगर हम बात करते हैं पोक्सो अधिनियम की, इसी धारणा को तोड़ने के लिए ये स्पेशल अधिनियम बनाया गया। अदरवाइज पहले रेप के प्रोविजन तो पहले भी थे, उनमें भी सजा का प्रावधान था, लेकिन पोक्सो अधिनियम के तहत विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, ट्रायल कोर्ट बनाई गई, जिनके अंदर जैसे पुलिस को भी बाउंड कर दिया है, टाइम बाउंड कर दिया है बीएनएस नए कानून आने के बाद, 2 महीने के अंदर अंदर हमें केस की पूरी कार्रवाई पूरी करके चालान कोर्ट में देना अनिवार्य है। अगर 2 महीने के अंदर कोर्ट में नहीं दिया जाता है चालान तो फिर पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होती है। इसमें 3 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है सर पोक्सो अधिनियम के तहत।
0: मेरे मन में एक सवाल है, मैं आपको बीच में नहीं आने दूंगा, मुझे पूछने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ आपने कहा ये पुलिस वाले अगर ढिलाई बरतते हैं उनके खिलाफ भी दंड का प्रावधान है। आपको याद आ रहा है आपके जिले में, पड़ोसी जिले में, वहां से लेके मतलब पलवल से लेके और अम्बाला तक किसी पुलिस अधिकारी को दंडित किया गया हो रिसेंटली हरियाणा में? ताकि विश्वास तो जमे कि प्रावधान नहीं है, प्रावधान लागू भी होता है। आपने सुना है कभी, कहीं पढ़ा है?
2: जी डिपार्टमेंटल कार्रवाई, डिपार्टमेंटल एक्शन सब जगह पर होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट में है।
0: उदाहरण देने लायक कार्रवाई हो जाती है?
2: बिल्कुल बिल्कुल सर, इंक्रीमेंट तक कटते हैं इवन सैलरी से।
0: चलिए तो ये लोगों के लिए
1: मुझे 2 मिनट चाहिए। इस समय जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही संवेदनशील विषय है, जैसे मैंने अभी कहा, और रेडियो से भी हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को ध्यान से सुन रहे हैं। कुछ कमेंट्स हमारे पास सोशल मीडिया से आए, मैं उनको दोहराना चाहूंगा। इंदरराज जी, इंदरराज सिंह लिखते हैं, कार्यक्रम में कुछ नया जोड़ने की योजना बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक है। और द वॉइस ऑफ मेवात लिखती हैं, गर्ल चाइल्ड के साथ साथ बॉय चाइल्ड को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति जानकर भी इस कैटेगरी में आगे आने वाले अपराध को छुपाता है तो वो भी अपराधी माना जाता है। और साथ में लिखते हैं कि बेटा सोनिया के द्वारा बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान की गई है पोक्सो के विषय में। मैम ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये कमेंट मैंने इसलिए भी पढ़ा था कि हमें विश्वास हो कि जो कार्य आप लोगों को मिला है, जो मैडम एडवोकेट मैडम को मिला है, जो हमें नागरिक के तौर पर मिला है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना समाज को सभी बनाएं और जिम्मेदारी निभाएं। और लोग इस टॉपिक को आज बहुत ही गहराई से सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, और मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा इस विषय पर आप एड्रेस हरियाणा के सभी श्रोताओं को करें, जिसमें अंबाला की श्रोता है, जिसमें पलवल की श्रोता है, नारनौल की श्रोता है, चरखी दादरी के, गोंदर करनाल के श्रोता, और बाकी भी सोशल मीडिया पर जो है। तो मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को ये मैसेज जाना चाहिए जो मैडम सोनिया और दिव्यता मैडम जो कहेंगे। तो जितेश जी आपका कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा प्लीज।
6: बिल्कुल सर, काफी देर से बहुत सार्थक चर्चा आज राम राम हरियाणा के एपिसोड में देखने को और सुनने को हमारे सभी श्रोताओं और हमें मिल रही है। हम स्पेशल आभार व्यक्त करेंगे अपना रेडियो चरखी दादरी का, जिन्होंने महिला इंचार्ज मैडम को हमारे साथ जोड़ा, डीएलएसए की जो महिला अधिवक्ता है उनको अपने साथ जोड़ा। ढेर सारे क्वेश्चंस वीरेंद्र सर और आपने बड़ी सार्थक चर्चा की, काफी अच्छे कमेंट्स भी हमें अपने राम राम हरियाणा कैंपेन पर देखने को मिल रहे हैं, लोगों की कॉल भी हमारे पास आ रही है। सर मैं एक बात मैडम से जानना चाहूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैम हम बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट की, पॉक्सो एक्ट की हम बात कर रहे हैं और आजकल हमारी जो सरकार है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि झूठे जो मुकदमे थे वो कहीं ना कहीं अब खत्म कर दिए गए हैं, चीजें बड़ी मतलब ऑनलाइन कर दी गई है। अगर हम कहीं अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हमारे पास कॉल आता है कि भाई आपकी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। कोशिश हरियाणा सरकार की और पुलिस प्रशासन की यही है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब जो झूठे मुकदमे हैं वो खत्म किए जाए, और इस कड़ी में हमारी हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस काम भी कर रही है। मैडम मैं एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगा, हम पॉक्सो एक्ट की बात कर रहे हैं, किसी पार्टी के खिलाफ अगर पॉक्सो एक्ट में कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो अपने बचाव के लिए वो पक्ष क्या कर सकता है?
2: वो कोर्ट में अपील दायर कर सकता है, क्योंकि पुलिस के पास इनिशियल कोई भी कंप्लेन आती है, कोई भी अगर संघीय अपराध की घटित होना पाया जाता है तो हम उसमें जांच नहीं कर सकते, वो काम कोर्ट का है। पुलिस का काम इतना है कि अगर इस दरखास्त पर संघीय अपराध का घटित होना पाया जाता है तो पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी और उसी हिसाब से पीड़ित के बयान लिए जाते हैं। अगर पीड़ित फर्ज करो झूठ भी बोल रही है, लेकिन हमें तो उसके बयान के अकॉर्डिंग और जो भी एविडेंस आता है उसी हिसाब से चलना पड़ता है। उसके बाद कोर्ट केस कोर्ट में चला जाता है, तो ट्रायल के दौरान अगर झूठा केस है तो जनरली नहीं कन्विक्शन होता है सर, वहां से बरी हो जाता है। अदरवाइज अगर आरोपी के पास कुछ भी प्रूफ है तो वो अपने कोर्ट में अपने प्रूफ लगा सकता है वहां पर।
6: बिल्कुल मैम, मैं यही जानना चाह रहा था कि पॉक्सो एक्ट की जो बात है इस पर हमारी जो पुलिस है वो बड़ी तत्परता से काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी, लेकिन हमारा जो बचाव पक्ष है, बचाव पक्ष मतलब जिनके खिलाफ ये झूठा मुकदमा दर्ज हो गया तो वो कोर्ट जा सकते हैं, तो इसके बारे में ही हम लोग जानना चाह रहे थे कि वो कोर्ट जाके इस पर अपनी अपील कर सकते हैं और अपने जो भी डॉक्यूमेंट से अपने आप को बेगुनाह साबित कराने के लिए वो सारे कोर्ट के ट्रायल में ही दिखा सकते हैं, थाने के स्तर पर मैम वो कुछ नहीं कर सकते।
2: नहीं सर, अगर वो कुछ ऐसा एविडेंस हमारे सामने आ जाता है तो पुलिस भी अपने लेवल पर कैंसिल भी होते हैं पॉक्सो के केसेस, ऐसा नहीं है कि कैंसिल नहीं होते हैं। अगर हमारे पास ऐसा एविडेंस आ गया है उस टाइम पर वो एक्यूज्ड की अगर लोकेशन कहीं और की आ रही है वो प्रेजेंट ही नहीं है क्राइम स्पॉट पर, तो एफआईआर कैंसिल भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि कैंसिल नहीं होती।
0: मैं एक बार सोनिया जी को रोकूंगा और एक श्रोता हमारे साथ लाइन पर बने हुए बड़ी देर से मैं श्रोता जी जरा एक बार सबको राम राम कहिए और पूछिए अपना सवाल अपना परिचय देते हुए।
7: नमस्कार जी, मैं प्रदीप डागर चरखी दादरी से।
0: हाँ प्रदीप डागर जी, आपके आपकी आवाज हम तक और पूरे हरियाणा तक पहुंच रही है, जरा पूछ लीजिए अपना सवाल।
7: सबको राम राम जी। मेरा सवाल ये जी, जो जैसे को लगाया जा रहा है इसमें 90% झूठे मुकदमे बढ़ते हैं जी, क्योंकि इसमें एक तो बंदे को पकड़ लिया अंदर डाल दिया तो उसका कोई वो नहीं है, तो उसकी सुनवाई कुछ जल्दी से हो जाएगी तो अंदर ही रहेगा जब तक उस केस की सुनवाई क्लियर नहीं हो जाए, बाहर निकलने का उसका कोई रास्ता नहीं होता, बाद में पता चलता है झूठा मुकदमा था।
0: चलिए थोड़ा सा आप जो कह रहे हैं झूठे मुकदमे दूसरे प्रावधानों दूसरे कानूनों के तहत भी दर्ज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है और ऐसा डागर जी सुनिए एक सेकंड, डागर जी ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जिसके दुरुपयोग की कोई गुंजाइश ना हो, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ मिसयूज। प्रदीप जी मैं सिर्फ ये सवाल तो जवाब तो मैं दोनों महिला जो हमारी यहां पर हैं विशेषज्ञ इस विषय की उनसे उन्हीं से लेंगे, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न ये है कि पीड़ित सामने आया आई उसने एक बयान दर्ज किया, क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए इतना पर्याप्त है सोनिया जी, इससे आगे भी कुछ चाहिए?
1: आज महिलाएं दोनों हैं तो
2: नहीं सर, अगर पीड़ित ने दरखास्त दी उस दरखास्त के हिसाब से हमारे पास संघीय अपराध का घटित होना पाया जाता है तो हमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन में एफआईआर मैंडेटरी है सर, दर्ज करनी ही पड़ेगी, वो जांच का विषय बाद का है कि वो झूठा है या सच्चा है।
0: अब मैं उस सवाल पर आता हूं जो डागर जी ने पूछा, मैं पूछ लेता हूं। डागर जी धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। लोग कहते हैं माने डागर जी ने तो डिक्लेयर कर दिया 80% 90% झूठे मुकदमे हैं, दो पक्ष यहां पर हैं, वकील साहिबा बैठी हैं और पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर हैं और महिला थाने की क्योंकि आप प्रभारी हैं इसलिए ये सारे मामले आपके हाथ से आपकी कलम के नीचे से होकर के गुजरते हैं, आपकी जांच पड़ताल का हिस्सा वो बनते हैं। आपका व्यक्तिगत अनुभव इन तीन वर्षों का महिला थाने की SHO के रूप में, क्या ये है कि 80-90% शिकायतें पोक्सो में वो झूठी पाई जाती हैं अंततोगत्वा, या पाई ना भी जाए झूठी सी होती है? क्या क्या ये आंकड़ा इतना बड़ा है?
2: नहीं सर, ऐसा नहीं है। डॉक्टर जो भी कह रहे थे अभी श्रोतागण आपके, दरअसल क्या है सर, आजकल ना रनअवे के केसेज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जो रनअवे के केसेज होते हैं, जो वो मोस्टली उनकी एज होती है सर लड़कियों की 16-18 के बीच में, अब वो अपनी कंसेंट से किसी लड़के के साथ में जाती है, बाद में चलो एक्यूज हो गया वो, जब घर वाले उनको लेके आते हैं, घर वालों के प्रेशर में लड़के के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देती हैं। कई केसेस में लड़के के अगेंस्ट स्टेटमेंट भी नहीं देती, लेकिन जो पोक्सो एक्ट हमारा कानून है वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कंसेंट को मानता ही नहीं है, तो उस टाइम पे सिर्फ उनके पेरेंट्स की कंसेंट चलती है। अगर वो उसका मेडिकल करवाना चाहते हैं तो भी स्टेटमेंट भी उनके अकॉर्डिंग हमें कार्रवाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो लॉ कहता है, हम लॉ से बाहर नहीं जा सकते। तो अभी सुप्रीम कोर्ट भी हमारे इन जो स्पेशल ये है कि भाई ये बहुत सारे केसेज बढ़ गए हैं सर आजकल, कि जहां पर लड़की लड़कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहती, बट अकॉर्डिंग टू लॉ चले तो हमें करनी पड़ती है। तो इस पर सर अभी विचाराधीन है ये, देखिए आगे अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का या हमारे सरकार की तरफ से कोई आगे इस अधिनियम में कोई बदलाव होता है तो उसी हिसाब से आगामी कार्रवाई करी जाएगी सर, अदरवाइज तब तक तो सर जो भी लॉ का प्रोविजन है उसी हिसाब से हमें चलना पड़ेगा।
0: दोस्तों राम राम हरियाणा सुन और देख रहे हैं आप, और राम राम हरियाणा में आज हम बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विषय है 18 वर्ष से कम के जो हमारे नागरिक हैं, आयु के 18 वर्ष की आयु से कम के, चाहे वो बेटा हो बिटिया हो, पुरुष हो, मतलब मेल हो या फीमेल हो, उनके विरुद्ध जो यौन अपराध होते हैं, उनका कहीं यौन उत्पीड़न होता है, तो उसको संभालने के लिए, उस उन मामलों को डील करने के लिए जो कानून है उसके प्रावधान क्या हैं, और उन प्रावधानों का, उन प्रावधानों के आने से परिवर्तन क्या आया है? दिल्ली के जिस प्रकरण से ये कानून बना, उस प्रकरण के बाद ये कानून आ गया, और कानून आने के बाद बदलाव कैसा आया? वकील साहब क्या आप कोई अंतर पाती हैं, या ऐसा तो नहीं महसूस होने लग गया भाई पहले भी कानून तो था ही, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कानून तो पहले एग्जिस्ट करते ही था, रेप के मामलों में कार्रवाई का प्रावधान तो कानून में था ही, पोक्सो आने से कुछ बदला कि नहीं बदला? कुछ लोग शायद ये कहने वाले होंगे कि किम में नहीं बदला, आपका क्या ओपिनियन है, आपका अनुभव क्या है?
8: मैं अपना अनुभव इसमें बताती हूँ कि जैसे कि आपको बताया कि ये जो कानून बना था, इससे पहले बच्चों के लिए स्पेसिफिक कोई कानून नहीं था। तो बोलते हैं तो 376 के मामले अगर रेप हुआ है तो वो सेम कैटेगरी में आ रहे थे, लेकिन जब ये देखा गया क्यों, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है, बच्चों के प्रति अगर इस तरह के अपराध होते हैं तो वो ज्यादा संगीन माने जाते हैं। आप यकीन मानिए ये जो एक्ट है ये सबसे सख्त एक्ट है, कि ये ऐसा एक्ट है जिसमें आपको मिनिमम 20 साल की सजा और आपको जो है फांसी की सजा तक इस एक्ट के तहत अपराधी को मिलती है। तो ये एक्ट जब तो सामने है, हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं होता है। देखो हम बचपन से पढ़ते आए हैं जैसे कि विज्ञान वरदान है, अभिशाप तो विज्ञान भी आया तो वरदान तो लेके आया लेकिन साथ में कुछ अभिशाप भी लेके आया। तो एक्ट जो बनते हैं वो किसी एक वर्ग के उनकी अच्छाई के लिए बनते हैं, दुरुपयोग उनका कुछ प्रतिशत होता भी है, हम इस चीज को मना नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ दुरुपयोग ही होता है, वो बहुत एक्सेप्शनल होता है। बहुत कम केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें ये पता चला है कि दुरुपयोग हुआ है, लेकिन पोक्सो में ऐसे मामलों की जो संख्या है वो बहुत कम है। मेरे सामने ऐसा कभी कोई मैटर नहीं आया है जिसमें किसी भी बच्ची ने या किसी भी बच्चे ने किसी भी अपराधी के ऊपर एलिगेशन लगाया हो और वो एलिगेशन गलत हो। मेरे समय में ऐसा कोई भी केस मेरे सामने नहीं आया है। मैं इस चीज को मना नहीं करती हूँ कि ऐसे नहीं होते होंगे, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। मेरे सामने अगर मैं 100 केसों में से भी गई हूँ तो मेरे सामने ऐसा कोई केस नहीं आया। हो सकता है 1000 केस में से एक केस ऐसा होता हो जिसमें झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं। एक मैं यहाँ पर आपको ममता जी ने जो क्वेश्चन किया था उनका आंसर यहाँ पे मैं उनको देना चाहूंगी। वो क्वेश्चन के माध्यम से वो पूछ रही थी कि गरीबों के लिए न्याय नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए है। तो उनको मैं बताना चाहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये हर एक जिला में है, सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के हर जिला में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी हुई है और उनका सबका ऑफिस होता है। वो क्योंकि चरखी दादरी से है
3: तो उनको मैं बता रही हूँ कि हमारा चरखी दादरी में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रूम नंबर 17 ऑफिस है, जो कि बिल्कुल महिलाओं, बच्चों और जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको फ्री में कानूनी सुविधा देता है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उनकी तरफ से यही बोला जाता है कि न्याय सबके लिए, यहाँ पर बिल्कुल भेदभाव नहीं किया जाता है कि न्याय देने के लिए हम अमीर को देख रहे हैं या गरीब को देख रहे हैं, तो न्याय वहां पर सबको दिया जाता है। ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से ना सिर्फ जागरूकता के कार्य किए जाते हैं, फ्री में वकील की सुविधा भी दी जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति को सरकारी खर्चे पर फ्री में वकील चाहिए तो वहां पर जाकर वो एक सिंपल से एप्लीकेशन लिख के और अपने आधार कार्ड की कॉपी देके आप सरकारी खर्चे पर फ्री में वकील ले सकते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि न्याय जो है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। दूसरी बात रही बात फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी हुई है, कार्य जल्दी से जल्दी होता है और सजा मिल रही है या नहीं मिल रही ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि केस की क्या स्थिति है, केस किस स्थिति पे है, क्या उसके एविडेंसेस हैं, क्या आउटकम आए हैं, और वो सारी चीजें ट्रायल में डिसाइड होती है, ना कि गरीब या अमीर होने।
1: जी
0: यहाँ पर एक सवाल भारत जी, मैं फिर आपको टोक रहा हूँ, आज तो मेरे जिम्मे लगता है आपको रोकना टोकना ही आ गया। मैं ये जान एक आरोप ये लगता है हमारी चर्चा में भी आ गया, ये पता नहीं आंकड़े सच हैं कि नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल, मेरे मन में बड़ी देर से उछाले मार रहा था। हम कई सारी स्टडीज में पढ़ते हैं, अखबारों में भी इस तरह की रिपोर्टिंग होती रही है, रिसर्च पेपर्स भी कुछ निश्चित तौर पर होंगे, जहां ये कहा जाता है कि बच्चियों या बच्चों के यौन उत्पीड़न के अधिकांश मामलों में जो अपराधी है, जो दोषी व्यक्ति है, वो या तो उसके परिवार का कोई सदस्य होता है या उसका कोई रिश्तेदार होता है। अब जब अधिकांश हम कहते हैं तो यूं लगता है कि वही होते हैं और कोई होते नहीं है। असल में दादरी के आंकड़े क्या कहते हैं प्रैक्टिकली, या मान लीजिए सोनिया जी जब से आप यहां पर तैनात हैं कोई रेशियो प्रोपोर्शन बता पाएंगे क्या? अधिकांश में तो यूं लगता है सारे वही होते हैं, इक्का दुक्का कोई होता होगा। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस आज तक का इस बारे में?
9: सर 90% के अराउंड केसेज में विक्टिम का नोन ही होता है अक्यूज्ड, क्योंकि अननोन पर्सन के लिए बच्चे को अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो इजी टारगेट होता है, चाहे उसका कोई पेरेंट्स है। इवन पेरेंट्स भी कई बार कल्प्रिट मिले हैं कि बच्ची के साथ उसके फादर ने या स्टेप फादर ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया, ऐसे भी बहुत केसेज आते हैं। अदरवाइज कोई रिलेटिव हो गया, कोई आस पड़ोस का हो गया, वो सब उसकी नॉन की कैटेगरी में ही आएंगे सर। या कोई दोस्त भी हो सकता है, स्कूल कॉलेज का कोई भी। बच्चे कई बार अपने मामा के नाना के कहीं चले जाते हैं तो वहां भी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा यौन शोषण के अपराध होते हैं, ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा रिपोर्ट होती हैं सर।
1: मैं एक बात
0: हमारे पुलिस
1: सर मैं भी एक बात
0: जी
1: मैं एक बात जानना चाह रहा था, जैसे आपने कहा कि एक्यूज जो है वो ज्यादातर परिवार के ही होते हैं, आमतौर पर हमने पढ़ा भी है क्योंकि हम एक थिएटर ग्रुप चलाते हैं, हमने कुछ स्कूलों में बैड टच गुड टच के बारे में कुछ छोटे नाटक किए जहां पे हमने बच्चों को ये बताने की कोशिश की है कि एक व्यक्ति जब आपको टच करता है उसका इंटेंशन को आपको समझना होगा। ये तो है जो हमने कार्य किया इस विषय में, और मैं आप दोनों को ये आश्वासन देता हूं कि आगे रेडियो वितस्ता पर पोक्सो एक्ट के बारे में हम विस्तार से जानकारी तैयार करेंगे और लोगों तक वो बार बार पहुंचाएंगे ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि जो एक्यूज्ड है, जितने भी केसेस आज तक हुए हैं, क्या उन एक्यूज्ड को जब काउंसिल किया गया या उनको सजा हुई या वो मुक्त हुई, क्या उनके सोच विचार पर कोई अंतर आया या वैसे के वैसे ही रहे वो? दोनों से मेरा प्रश्न मैडम।
9: सर जनरली उनकी सजा के, हाँ जी सर, एक्यूज का गिल्ट बहुत ही मतलब रेयर केस में देखो, जब एक बार हम पकड़ते हैं तब तो हर एक्यूज यही कहता है कि जी गलती हो गई हम लोगों से। अच्छा। बट एक्चुअल में उसको उसका पछतावा है कि नहीं है वो तो फॉर द टाइम बिंग आने पर ही पता चलता है कि धीरे धीरे उसके व्यवहार में कुछ चेंज है कि नहीं है। और जनरली बरी होने के बाद सर बहुत ही रेयर केस में कि मतलब सजा के कितनी लंबी सजा हुई है, 10 साल 20 साल कितनी, तो उसके बाद उनसे मिलना नहीं होता, तो बाद का व्यवहार के बारे में नहीं कर सकते सर। लेकिन जनरली एक बार तो जब आते हैं तो सब यही कहते हैं कि जी गलती होगी हम लोगों से, लेकिन असल में अगर उनको वाकई पछतावा है नहीं है वो तो सर उनके बाद के बिहेवियर से ही पता चल सकता है
1: जी। काउंसिल मैडम, एडवोकेट मैडम, जब आप काउंसिलिंग करते हैं तो काउंसलिंग के बाद क्या आपको लगता है कि उनमें कोई बदलाव आता है? और मैं ये जरूर आप दोनों से अनुरोध एक बार फिर करूंगा, आप एड्रेस करें सभी हरियाणा के श्रोताओं को विभिन्न सामुदायिक रेडियो से, ताकि इस बात को हम सब तक पहुंचा पाएं। तो क्या काउंसलिंग के बाद आपको लगता है कि उनमें कोई बदलाव, या उनको ऐसा लगता है कि जो हमने किया वो नहीं करना चाहिए था, तो आपका इसमें क्या कहना है?
8: तो मेरा कहना ये है कि बदलाव कभी भी एकदम से नहीं होता है
1: जी।
8: कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, वो जो बोलता है सडन कि नहीं मुझसे गलती हो गई है, वो उस समय पे उस सजा से बचने के लिए वो बोलता है कि हाँ मुझसे गलती होगी, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हाँ अब तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, अब तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि पोक्सो नियम बहुत सख्त है। तो उसको पता है कि 6 महीने से पहले तो तेरी बेल भी नहीं होगी, या 1 साल से पहले तेरी बेल भी नहीं होगी। तो इनिशियल स्टेज पे तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या उस व्यक्ति को कोई फर्क पड़ा है। स्टार्टिंग में उसकी काउंसलिंग कर भी दी जाती है, तो थोड़े बहुत समय का उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। लेकिन हाँ, किसी व्यक्ति के साथ अगर वो धीरे धीरे उसकी बार बार काउंसलिंग की जाए, उसको बार बार बताया जाए, समझाया जाए, या वो एक ऐसे एनवायरमेंट उसको दिया जाए जिसमें उसको लगे कि हाँ उसने जो चीजें की है वो गलत है वाकई में, ये तो उसकी अंतरात्मा ही बता पाएगी। और तो वो व्यक्ति अपने आप को अपराधी मान भी रहा है या नहीं मान रहा, ये सारे फैक्ट्स डिपेंड करते हैं
1: जी। धन्यवाद जी। जी वीरेंद्र सर,
0: नाबालिग जो बच्चे हैं उनके विरुद्ध अपराध रोकने के लिए या अपराधियों को दंडित करने के लिए पोक्सो बना निर्भया प्रकरण के बाद। यहां पर निर्भया प्रकरण में ही एक बात और सामने आई, जब वो मामला अदालत में चला तो क्योंकि निर्भया के जो अपराधी थे उनमें कुछ लोग, कम से कम एक तो था ही, वो नाबालिग था, तो ये बात भी चली कि यह अपराध करने वाला अगर नाबालिग है तो क्या वो आसानी से छूट के निकल जाएगा? इस पर लीगल फ्रेटर्निटी क्या सोचती है, पुलिस के नाते क्या दृष्टिकोण? आप दोनों की छोटी छोटी टिप्पणी जरूर चाहूंगा। और दोस्तों, हमारे जो दो मेहमान हैं उनसे आप अभी सीधे बात कर सकते हैं। बात करने का तरीका है कि आप हमारे राम राम हरियाणा के स्टूडियो नंबर पर 88 16 904 904 पर फोन करके सीधे पूछ सकते हैं अपने मन का सवाल हमारे दोनों विशेषज्ञों से। मैं सोचता हूं वकील साहिबा से शुरू करेंगे और सोनिया जी फिर इस पे फाइनल टिप्पणी देंगी कि व्यक्तिगत तौर पर एक पुलिस अधिकारी के रूप में, एक जांच अधिकारी के रूप में आप कैसा इस बारे में सोच रहे हैं? एक कॉलर है, मैं समझता हूं उनको हम सुन ले पहले।
1: जी जी,
0: हेलो,
10: नमस्कार सर।
0: हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
10: मैं मनोज गर्ग बोल रहा था।
0: मनोज गर्ग जी कहाँ से?
10: सर की दादी से बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ मनोज जी, क्या कोई सवाल पूछना चाहते हैं
10: आप? जी, मेरा दोनों साहिबान से ये प्रश्न है सर, जैसा आप कहते हैं क्या नाबालिग होने पर एक वो लाइसेंस मिल जाता है कि भाई कोई भी गलत काम कर सकता है, तो इस पे रोक लगनी चाहिए सर? मतलब वो तो एक फ्री लाइसेंस हो गया ना, कि उनको कोई बैंक नहीं है, लेकिन लाइसेंस हो गया कि भाई हम नाबालिग है, तो एक वो
0: मनोज जी, जन सामान्य साधारण लोगों के मन में ये सवाल है ही, इस पर एक लीगल दृष्टिकोण होगा, एक मानवीय दृष्टिकोण होगा, एक बच्चों की तरफ खड़े होकर देखने का दृष्टिकोण होगा। लेकिन बच्चों की तरफ, अपराधी भी बच्चा है और पीड़ित भी बच्चा है, तो आप लोग क्या सोचते हैं? जी शुक्रिया मनोज जी, आप जुड़े हमारे साथ। वकील साहिबा पहले आपकी टिप्पणी।
8: जो आपका भी सवाल था और जो इनका भी सवाल था, वो जो ज्यादातर जुड़ा हुआ है जो नाबालिग बच्चे हैं और जो आपराधिक गतिविधियों में आ जाते हैं, जिनको कि हमारे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से हम अपराधी भी नहीं बोल सकते, उनको हम विधि विरोध बालक बोलते हैं। यही हमारे एक्ट में बताया गया है,
0: जिसको ये शब्द दोहरा दीजिए हमारी डिक्शनरी के लिए, हम लोगों के लिए भी नया है, भारत जी भी नोट करेंगे, मैं तो करूंगा।
8: ये जो शब्द है इसको बोलते हैं विधि विरोध बालक या विधि विरुद्ध बालक,
0: विधि विरुद्ध,
8: जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि बच्चा जो आपराधिक गतिविधियों में चला गया है।
0: जी विधि विरुद्ध बालक,
8: कंफ्लिक्ट विद लॉ, विधि विरुद्ध बालक। तो आप देखेंगे कि इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना हुआ है। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या करता है कि जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक हैं,
3: और जो विधेय विरुद्ध है, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीसीएल, यानी कि जो बच्चा सीसीएल है वो बच्चा अगर किसी आपराधिक गतिविधियों में चला गया तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती है हमें उनको क्रिमिनल नहीं बनाना है। उनसे अपराध हुआ है, बच्चों से अगर अपराध हुआ है तो वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं होते हैं वो बच्चे। वो किसी कारणवश किसी नशे में आके या किसी गलत संगत में फंस के या अनजाने में वो उन बच्चों से अपराध हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला कर्तव्य ये रहता है कि उन बच्चों को सुधारा जाए, ना कि उन बच्चों को, अगर एक 16 साल का बच्चा है अगर उसको एक अडल्ट जेल में डाल दिया गया जहां पर 40 45 50 न जाने किस उम्र के कितने ज्यादा क्रिमिनल लोग रहते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या वो बच्चा वहां पर जाकर सुधर के आएगा? नहीं, वो क्रिमिनल के बीच में रह के तो ऐसे ही चीजें सीखता होगा। इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है। तो लोगों को लगता है कि अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बन गया है तो उसमें बच्चों को जो है जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको सजा नहीं मिलती है। उनको सजा मिलती है, ऐसा नहीं है। उनके लिए सुधार गृह बनाए गए हैं, उनको नॉर्मल जेल में नहीं भेजा जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कस्टडी में नहीं रहते। उनका भी ट्रायल चलता है, उनकी भी कस्टडी होती है। और रही बात जो आप निर्भया कांड के बाद आप बता रहे थे कि वहां पर आप देखेंगे कि जेजे एक्ट में एक बहुत मेजर चेंज आया था। इसमें ये बताया गया था कि अगर बच्चे, वैसे तो हम नाबालिग बच्चों को लेते हैं 18 साल की उम्र में, लेकिन अगर बच्चे ने इस तरह का हीनियस क्राइम किया है, रेप जैसी चीजें अगर बच्चे ने की है और उसकी उम्र अगर 16 साल से ऊपर है, अगर वो बच्चा 16 साल से 18 साल की उम्र में, यानी कि वो कैपेबल है रेप करने के लिए, रेप करने उसकी कैपेसिटी है कि वो बच्चा रेप कर सकता है, तो उसके जो ट्रायल हुआ है वो एज अ अडल्ट कोर्ट में चलेगी। की जैसे ट्रायल वैसी ही चलेगी, ऐसा नहीं है उसकी ट्रायल बच्चे की तरह चलेगी। ये जो मेजर चेंज आया है ये उसी के बाद आया है और इसके लिए काफी बड़ा ये जो एक लैंडमार्क जो एक जजमेंट और एक लैंडमार्क जो चेंज है वो हमारे जेजे एक्ट में आया है।
0: सोनिया जी।
1: सर
9: जी, जैसा कि मैम ने बताया सर, जेजे एक्ट का स्पेशल यही वजह थी इसको लेके आने की, ताकि नाबालिग बच्चे जो अपराध करते हैं उनको भी सजा दी जा सके। वो सजा का तरीका अलग है, उनको हम सुधार गृह भेजते हैं ताकि उनको जिस परिस्थिति में उसने वो क्राइम किया है उस परिस्थिति से दूर किया जा सके, और उसके आगे आने वाला पूरा भविष्य पड़ा है। अब 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है तो उसका आगे पूरा भविष्य है, और बच्चे ही हमारे देश का भविष्य है। तो अगर हम छोटे छोटे बच्चों को उनके हालातों पे छोड़ देंगे और नॉर्मल जेल में शिफ्ट कर देंगे तो हम कभी भी उनसे सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते। और जैसे कि अगर कोई हीनियस क्राइम करता है, मैम ने भी बताया कि अगर 16 से 18 वर्ष के बीच में है, जेजे बोर्ड का स्पेसिफिक मेन फंडा यही है सर, वहां पर एज के अकॉर्डिंग असेसमेंट किया जाता है बच्चों का, उनकी काउंसलिंग की जाती है कि अगर बच्चा प्रॉपर इसी काउंसलिंग इसी माइंडसेट से हो गया है कि आपराधिक गतिविधि में संलिप्त है और उसके सुधार के कोई चांसेस नजर नहीं आते, तो उसको एज ए अडल्ट ट्रीट किया जाएगा, उसका ट्रायल नॉर्मल कोर्ट में चलेगा। और अगर जेजे बोर्ड को ये लगता है कि बच्चे को सुधारा जा सकता है तो उसको सुधार गृह में भेजा जाता है। ये सब सारी चीजें इसीलिए की गई है। हाँ जी
1: जी वीरेंद्र सर, इस कार्यक्रम के कुछ क्षण और हमारे पास बचे हैं, और सबसे पहले तो मैं प्रीतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने आज इन दो सशक्त महिलाओं को यहां पे स्टूडियो में बुलाया और हमें मार्गदर्शन भी मिला और हमारे श्रोताओं को भी और लोगों को भी, और जानकारी और भी ले लेंगे। पर गुरविंदर जी काफी समय से कुछ पूछना चाहते हैं, गुरविंदर जी पूछें और उसके बाद कुछ क्षण इस कार्यक्रम के बचे हैं और हम इन सभी का धन्यवाद भी करेंगे। गुरविंदर जी,
11: आज के प्रसारण में मैं दोनों मेहमानों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं इसमें मैडम सोनिया जी और हमारी एडवोकेट साहबा से ये पूछना चाह रहा हूं कि इस जो जे पोस्को के दिन जो क्राइम रेट है वो चरखी दादरी का क्या है और हरियाणा स्टेट का क्या है, और किस एरिया में ज्यादा जे क्राइम हो रहा है हरियाणा में, और जो केस अनरिपोर्टेड रह रहे हैं क्या उनके ऊपर भी कोई आप काम कर रहे हैं, दूसरा जे किस सोसाइटी में हो रहा हो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम क्या आप कर रहे हैं, प्लीज इसका जवाब दीजिए।
1: जी मैडम सोनिया।
9: हाँ जी, चरखी दादरी में पोक्सो का क्राइम इतना ज्यादा नहीं है, चाहे वो इस वजह से लगा सकते हैं, हमारी छोटी डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा के जो मेजर बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं सर, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, क्योंकि वहां पर मजदूर और वर्कर काफी दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आके लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे मतलब वल्नरेबल लेबर के बच्चे हो गए, थोड़ा सा इजी एक्सेस हो जाता है कल्प्रेट के लिए, अक्यूज के लिए। और जैसा कि सर ने कहा कि आप इनके वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, जो नॉन रिपोर्टेड होते हैं सर, उन्हीं के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं, हम स्कूल्स में भी जा जाके बताते हैं, बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं, काउंसलिंग के दौरान बच्चे हमें बताते भी हैं सर इवन, जैसे बच्चों को पता भी नहीं होता कई बार कि उनके साथ ये अपराध हो रहा है, तो जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं बच्चों को बताते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे अपराध हुए हैं। और मेन तो सर अवेयर करके ही उन लोगों को इतनी हिम्मत दी जा सकती है कि वो इसके बारे में आगे आए और सबको अपने साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट कर सके।
1: जी मैडम देविता,
9: इसमें सर मैं एक चीज, हाँ जी सर एक सेकंड मैं एक ऐड करना चाहूंगी हमें
1: श्रोतागणों
9: से।
1: जी
9: हाँ जी सर, एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है टोल फ्री नंबर।
1: जी बताइए।

0: हर एक डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, तो अगर कोई पेरेंट्स या बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करता है पुलिस स्टेशन में आके रिपोर्ट करने के लिए, तो या तो आप 1098 पर कॉल कर सकते हैं या बाल कल्याण समिति में आकर भी अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। बाल कल्याण समिति पुलिस स्टेशन को आगे फॉरवर्ड कर देती है फर्दर। और मैम ने बता ही दिया सर, इसके बारे में पब्लिक नहीं किया जाता है, मीडिया भी बाउंड है कि बच्चे की आइडेंटिटी और उसके पेरेंट्स के बारे में सबसे छिपा के रखा जाता है, उसके बारे में नहीं बताया जाता। तो हम आपके श्रोतागणों से यही उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उससे डरे नहीं, घबराए नहीं, सामने आके उसके बारे में रिपोर्ट करें ताकि हम एक्यूज को सजा दिलवा सके।
1: बहुत
0: जी
1: बढ़िया, बेहतरीन अंदाज में आपने आज अपनी बात कही, और मुझे ये लग रहा था भारत जी, ये हमारी जो दोनों मेहमान हैं, अगर इन दोनों को ही हम 1 घंटा पूरा इस कार्यक्रम का दे देते और ये दोनों आपस में बात करते करते इनके पास इतना सारा कुछ कहने के लिए था और है कि 1 घंटा कम पड़ जाता। और प्रीतम जी का आभार व्यक्त करना बनता ही है कि उन्होंने
2: जी
1: दो मेहमान हमारे साथ जोड़ी। और हमारी ये सोनिया जी तो बहुत त्वरित अधिकारी हैं, मुझे लगता है बहुत दूर तक इनको जाना है। मैं जो सवाल पूछने वाला था उसको उत्तर पहले ही दे दिया, अब बताइए अंतर्यामी टाइप ये तो
2: जी
1: मैं
2: जी
1: आखिर में पूछने वाला था, हमने हेल्पलाइन नंबर का जिक्र नहीं किया, भाई कहीं अपराध हो जाए, किसी बच्चे के साथ हो जाए और उसको कहीं और कहना ना हो, तो ऐसा तो ऐसी तो व्यवस्था की हुई है सरकार ने कि एक नंबर है, उस नंबर पर फोन करके कोई भी पीड़ित भी या जनसामान्य में से कोई भी अभिभावक भी तुरंत सूचना दे सकते हैं, बच्चे वो सुरक्षित रहें, बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाले वो भयाक्रांत रहें, वो कारागार में रहें, सजा पाएं, सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है। कानून में इसके लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, आवश्यकता किस बात की बचती है भारत जी
2: जी
1: कि अभी भी समाज, जनसामान्य, अभिभावक, शिक्षक, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं, मैं ये कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रैंक के जो अधिकारी हैं, विभागों के अध्यक्ष हैं, कानून के प्रावधानों से पोक्सो सहित जो इस तरह के अपराधों से जुड़े हुए कानून है उनके बारे में उनको भी बहुत ज्यादा जानकारी
2: नहीं है।
1: नहीं है। अभी
2: यस
1: जगाने की और जागने की गुंजाइश बहुत है। मैं, आप, सोनिया जी, वकील साहिबा, गुरविंदर जी, हम सब मिलकर दिन रात लगे रहे इस काम में तो भी मुझे लगता है इस काम को और अधिक करने की गुंजाइश रहेगी। 5:01 हुआ चाहते हैं, राम राम हरियाणा को विराम देने का समय है, लेकिन ये विराम देते हुए मैं ये कहूंगा कि पोक्सो अधिनियम सहित कमजोर जो जिन्हें हम मानते हैं समाज के तबके, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे महिलाएं हों, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए काम शुरू करने का समय है। ये अंत नहीं, आज के इस कार्यक्रम को हम एक शुरुआत इस
2: मानते
1: रूप
2: हैं
1: में घोषित करते हैं। हाँ, समय समय पर हम इन दोनों विशेषज्ञों को भी जोड़ते रहें और इनके अलावा भी जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर जिले में जैसा बताया गया कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए समितियां सरकार ने बनाई हुई हैं, और सब जगह अगर DLSA है तो ऐसे ही स्टेट लेवल पर भी लीगल सर्विस अथॉरिटी हरियाणा समेत हर राज्य में काम करती है, जरूरतमंदों को न्याय उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए, निशुल्क मदद करने के लिए हमारे अधिवक्ताओं का, विशिष्ट अधिवक्ताओं के बड़े बड़े पैनल, वो सरकार ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, जिला अदालतों ने वो तैयार रखे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं और आज के कार्यक्रम को यहीं दें विराम, सोमवार को मिलेंगे। क्यों भारत जी,
2: जी
1: मैं कार्यक्रम को विराम देने का काम आप पर
2: जी
1: छोड़ते हुए अपनी ओर से सबको राम राम कहते हैं।
2: मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हम रेडियो प्रसारण करते हैं तो हम शक्लें नहीं देखते हैं, हम आवाजें देखते हैं। आज हमारे साथ दो सशक्त आवाजें ऐसी हैं जो वाकई हमारे देश, हमारे प्रदेश को बदलाव दे सकती हैं, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ में प्रीतम जी का शुक्रिया जिन्होंने आपको आज हमारे साथ और साथ में हरियाणा के सभी श्रोताओं के साथ रूबरू किया और बहुत सारी जानकारी हमें भी मिली और हम कोशिश करेंगे कि इस जानकारी को रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और मिलते हैं सोमवार को कार्यक्रम राम राम हरियाणा में।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: था ना।
1: तुम जाओ अंजू, मैं यहीं ठहरता हूँ।
0: क्यों, उनकी चोरी की है जो सामने जाने से डरते हो?
1: आखिर इंसान ही तो हूँ मैं।
0: अच्छा तो चलो

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: सही रास्ता, सही चुनाव। सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज की शाम हम सजाए हैं गजल के उस शहजादे पंकज उदास जी के नाम, दर्द जज्बात मोहब्बत और अल्फाजों के सुरूर के साथ पेश है श्याम गजल।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
3: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
2: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
3: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
2: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरणी।

सभी सुनने वालों को किरणी का प्यार भरा नमस्कार। पेश है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स, जहां हम लेकर आते हैं उन गीतों की महफिल जो दिल के काफी करीब है। आज के इस कार्यक्रम में पेश है कुछ रोमांटिक ड्यूट्स, वो गीत जो दो आवाजों में पिरोए गए और हर लफ्ज हर सुर में मोहब्बत की खुशबू है। तो चलिए आइए एक बार फिर चलते हैं उस जमाने में जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे, महसूस भी किए जाते थे।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 15, रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, सहयोग राहुल अलियान का, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया आरजे किरणी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
2: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
1: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
2: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
1: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
3: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: मैं गोरी घड़ी

0: देश भर के विभिन्न ऐसे विवाद जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, उनको शांतिपूर्ण समझौते से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस 21 से 23 अगस्त समाधान समारोह की एक खास पहल शुरू की है,
1: जिसके तहत आप अपने मामले जैसे चेक से संबंधित, श्रम एवं रोजगार, भूमि और पारिवारिक विवाद, एक्सीडेंट क्लेम केस और साथ ही ऐसे आपराधिक मामले जो कानूनी तौर पर आपसी सहमति से सुलझाए जा सके, उनका जल्द से जल्द समाधान कराकर अंतिम निर्णय पा सकते हैं।
0: ज्यादा जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध गूगल फॉर्म के माध्यम से अपना विवरण जमा कराएं।
1: आज ही अपने निकटतम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर कॉल करें। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 मई 2026 तक है।
0: सुलह का इरादा, शीघ्र न्याय का वादा।
2: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्ते दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको अपनी पसंद के चंद नगमे सुनवाएंगे। हमें उम्मीद है हमारी पसंद आप जरूर एक्सेप्ट करेंगे। मैं हूं इस कार्यक्रम में आपका मेजबान रमेश मराठा।

हम हैं यहाँ मुसाफिर, चलते हैं बेदर्द मौसम में अपनी अपनी मंजिल की तलाश है। शायद कभी मील के पत्थर को छूते और तुम्हारी मांग में सिंदूर भी भरते, तुम शरीक सफर बन पाते, पर यह राहें हैं दुश्वार और पथरीले, इन पगडंडियों में फिसलन है। और अब ये रास्ते गीले हो चुके हैं।

0: मौके यूं ही बरकरार रहें, गर वक्त से पहले तुम लौट आओ। तुम अक्सर कहा करते थे लौट आऊंगी, फिर से तुम्हारे आगोश में पनाह लूंगी और एक साथ मोहब्बत के एहसास को महसूस करने की हम दोनों कोशिश करेंगे।
1: तुम जो मिल गए हो,
0: ताकि अधूरे वादों को निभाकर हम इन्हें पाए तकमील तक पहुंचा सके। यही मेरी रब से इल्तिजा है।

हमारी दुनिया में ये हवाएं फिजाएं इन कपकपाती धड़कनों को हम संभाल लेंगे। यरकानी पत्तों के इस मौसम में अपनी मखमली दुआओं से बज़्म इलाही में शायद हमारी इल्तिजा हमारी फरियाद सुनी जाए। हमने ये भी सुना है रब यही बसता है और उसकी रहमत का कोई हिसाब नहीं।

सरसराहट, रुखसार पे मुस्कुराहट, अन सुलझे सवालात, शब रोज ख्वाबों में दस्तक देना, पथरीले रास्तों को हरा कर मुझे मेरे भटकाव से मुक्त करना, यही तेरा एहसान था, तुम्हारा करम, तुम्हारी नवाजिश थी।

लिए बस इतना ही। श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट भारत सोपोरी। घड़ी की सुइयां गवाही दे रही है कि अब हमारे आज के सफर को यहीं थामने का वक्त आ गया है। रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक था। उम्मीद है कि आज का हर एक पल, हर एक नगमा और हर एक जानकारी आपके दिल के करीब रही होगी। आइए बात करते हैं आज एक खास विषय पर, जिस एक खास नया जो एक कानून है बच्चों के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, जिसको कहा जाता है पॉक्सो एक्ट। इसके बारे में आज बात करेंगे। हमें लगा कि ये जानकारी आप सभी तक पहुंचानी बहुत आवश्यक है। श्रोताओं, जैसे कि आज हमने अपने विशेष कार्यक्रम राम राम हरियाणा में बात की, हमारे समाज का भविष्य हमारे बच्चे के सुरक्षित बचपन पर निर्भर करता है। इसी दिशा में पॉक्सो एक्ट 2012 यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट एक बेहद मजबूत और जरूरी कानून है, जो 18 साल से कम उम्र के सभी नाबालिग बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, चाहे लड़का हो या लड़की। ये कानून बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस कानून के तहत अपराधों को मुख्य रूप से इन श्रेणियों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम सभी को जागरूक होना बेहद जरूरी है। पहला, अश्लील इरादे से हमला यानी सेक्सुअल असॉल्ट। किसी भी बच्चे को गलत नियत या अश्लील इरादे से छूना या उसे प्रताड़ित करना। दूसरा, गंभीर अश्लील हमला एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। जब कोई हिंसक तरीके से या अपनी स्थिति, जैसे हमारे समाज में अलग अलग है, पुलिस है, डॉक्टर है, टीचर है या कोई अन्य स्थिति का फायदा उठाकर बच्चे का शोषण करता है। तीसरा, अश्लील पैट यानी सेक्सुअल पेनिट्रेशन या रेप, बच्चे के साथ किया गया गंभीर शारीरिक शोषण। और चौथा, अश्लील सामग्री पोर्नोग्राफी में बच्चों का इस्तेमाल, बच्चों की अश्लील तस्वीरें या वीडियो बनाना, उन्हें दिखाना, शेयर करना या अपने पास रखना भी इस कानून के तहत एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। याद रखें, बच्चों की सुरक्षा सिर्फ कानून की नहीं, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर आपको अपने आसपास किसी भी बच्चे के साथ कुछ भी गलत होता हुआ दिखे तो चुप ना रहें। तुरंत चाइल्ड लाइन नंबर यानी 1098 यानी 1098 या 1098 पर सूचित करें। आपको चिल्ड्रन हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर बताते हैं, 1098 यानी 1098 पर सूचित करें। आपकी एक सजगता किसी मासूम का बचपन बचा सकती है। तो ये था आज का विषय। हालांकि हमने तो आपको विस्तृत तो जानकारी नहीं दी, संक्षिप्त में जानकारी दी, पर हमारी कोशिश है रेडियो वितस्ता से आप सभी नागरिकों को सचेत करना है कि बच्चों का और आसपास के ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। चलिए श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आज की शाम की इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ करते हैं आपको विदा और हम भी आपसे होते हैं विदा। रोज की तरह पंक्तियां यूं है, परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। एक बार फिर पढ़ता हूं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कल फिर इसी मोड पर मुलाकात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कल फिर इसी मोड पर मुलाकात होगी। तो ये पंक्तियां आप सभी के नाम और
जाने से पहले आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण

देता हूं, कल 30 मई 2026 शनिवार को जो कार्यक्रम हम आपके लिए लाए वो इस प्रकार है। 5:58 पर वंदे मातरम से हम शुरुआत करते हैं, लाएंगे आपके लिए एक वंदे मातरम के साथ प्रकाश प्रवाह, एक सुविचार। पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। 6 बजे आप सुनेंगे भक्ति संगीत, 7:05 पर सुनहरे पल एपिसोड 14 रोशन पर तैयार किया गया कार्यक्रम पेश करेंगे आरजी किरनी। 8:30 बजे किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट, कल आप सुनेंगे एपिसोड 19 बच्चों के सवाल पूछने की आजादी। और 9:30 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी किसे एपिसोड 1 आन मिलो सजना, फिल्म पर तैयार किया गया कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दीपक कश्यप। 10:10 पर काव्य गोष्ठी एपिसोड 5 पंजाबी में होगा, हमारे साथ होंगे प्रवीण वर्मा खिप्पल, पेश करेंगे आरजे सेजल। संगीत की सभा जारी रहेगी, आप सुनेंगे कृषि समाचार और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल और 7 बजे रेट्रो हिट्स एपिसोड 9 दिल की बातें पेश करेंगे आरजे किरनी। और 8:30 बजे सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा, कल के शीर्षक है मिले जुले गीत। उम्मीद करते हैं कि आपको कल के कार्यक्रम भी पसंद आएंगे और अपना फीडबैक हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। रेडियो विदस्ता 90.0 FM से अब मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं इजाजत। आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें, बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार दें, बड़े बुजुर्गों का आदर और सत्कार करें। एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप अम्बाला से हैं और आप अपने अनुभव अपने एक्सपीरियंस से अम्बाला की जनता को कुछ कहना चाहते हैं तो आप जरूर अपने बारे में भी हमें लिखें ताकि हम आपको आमंत्रण दे सकें और स्टूडियो में बुला के आपकी बात को रिकॉर्ड किया जा सके और हम श्रोताओं तक पहुंचाएं। तो अब इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही, कल सुबह 5:58 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।